नॉर्वे के मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स सेसिली मिरसेट ने उन्होंने कहा इन अ स्टेटमेंट, द फैक्ट दैट वी कैन नाउ लॉन्च सैटेलाइट्स फ्रॉम एंडोया स्ट्रेंथन्स नॉर्वेजियन एंड यूरोपियन सिक्योरिटी इन द टर्बुलेंट टाइम्स वी लिव इन। ऐसे कहते हुए जर्मन चांसलर विजिटेड आईएसआर'स लॉन्च साइट इन मार्च, अंडरस्कोरिंग यूरोप्स एफर्ट टू एस्टैब्लिश ग्रेटर ऑटोनॉमी एज द ग्लोबल ऑर्डर वंस चैंपियन्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स इज शिफ्टिंग फ्रॉम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ब्लास्ट किया नॉर्वे के आर्कटिक एंडोया स्पेसपोर्ट से द स्पेक्ट्रम, विच इज डिजाइन फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड पेलोड्स। इट कैरीड 5 स्मॉल सैटेलाइट्स एज वेल एज एन इन फ्लाइट टेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट अकॉर्डिंग टू आईएसआर। ISR का ये सेकेंड लॉन्च रहा, कमिंग 18 मंथ्स आफ्टर द कंपनीज फर्स्ट रॉकेट प्लंज्ड इनटू द सी एंड एक्सप्लोडेड इन अ फायरी स्पेक्टिकल शॉर्टली आफ्टर टेक ऑफ फ्रॉम द सेम साइट। उस समय कोई भी इंजर नहीं हुआ था और मार्च 2025 का वो लॉन्च वॉज नॉनदलेस डीम्ड अ सक्सेस बाय द कंपनी फॉर जनरेटिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा फॉर इट्स डेवलपर्स। वेल, देख रहे हैं कि धीरे धीरे बहुत से देश पहुंच रहे हैं स्पेस, और बहुत से, ऑफकोर्स भारत तो पहले ही पहुंच चुका है, याद है ना आपको। गुड मॉर्निंग।

0: आइए बात करते हैं मलेशिया की इस समय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज द मॉर्निंग शो और आप सुन रहे हैं रेणुका को इस टाइम ऑन मस्ती 24/7। सुबह का असली वेक अप कॉल, द मॉर्निंग शो विद रेडियो मस्ती 24/7। मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने इसी वीकेंड पर कहा दैट ही इज ओपन टू कंसीडरिंग कॉल्स फॉर अ जनरल इलेक्शन टू बी हेल्ड अर्ली एंड दिस इज अमिड अपील्स फ्रॉम द ऑपोजिशन एंड इवन हिज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इन द यूनिटी गवर्नमेंट। बट अनवर ने साथ ही साथ में स्ट्रेस किया कि कोई भी ऐसा डिसीजन वुड बी ओनली मेड आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन बिफोर इट इज प्रेजेंटेड टू मलेशियन किंग सल्तन इब्राहिम सल्तन इस्कंदर फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। उन्होंने ये कहा कि मैं कंसिडर कर सकता हूँ ये सजेशंस, बट द डिसीजन विल बी मेड बाय मी आफ्टर आई हैव थॉट अबाउट इट। मैं प्रेजेंट करूंगा टू यांग डी पर्टवान अगोंग, ही वॉज कोटेड एज सेइंग बाय लोकल न्यूज। अनवर ने रिस्पॉन्ड करे कॉल्स फ्रॉम डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अहमद जाहिद हामिदी जो कि BN कोएलिशन से आते हैं, एज वेल एज फ्रॉम अब्दुल हादी अवांग द प्रेजिडेंट ऑफ PAS फॉर स्नैप पोल्स टू बी हेल्ड। PAS एक कॉम्पोनेंट पार्टी है ऑफ द ऑपोजिशन कोएलिशन PN विच हैड वर्कड विद BN इन द रीसेंट नेगरी सेम्बलन स्टेट इलेक्शंस। PAS ने कहा कि सपोर्टर्स को वोट करने के लिए फॉर BN इन द जोहर स्टेट इलेक्शन दैट वॉज हेल्ड इन जुलाई। मलेशिया के 16 जनरल इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड इन फेब 2028 और इस समय अनवर की यूनिटी गवर्नमेंट जो कि बनी हुई है PH के कोएलिशन के साथ में BN एज वेल एज बोर्नियो बेस्ड कोएलिशंस। Even though it is a unity government, BN had contested in the Johor state election on its own and formed an alliance with PN during the Negeri Sembilan state election. Char Democratic Action Party, DAP, assemblymen from PH also withdrew their support for the Malacca state government, which is headed by a BN chief minister. अब देखने की बात यह है कि क्या वाकई जो पोल्स हैं वो पहले होते हैं या फिर अपने टाइम से रहते हैं। ये डिसीजन हम आपको ऑफ कोर्स बताते ही रहेंगे आने वाले दिनों में। होने तो जी दीजिए डिसीजन। Keep tuning in to the morning show and of course Radio Masti 24/7 for all sort of updates and news from across the world. Good morning.
1: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.

0: टू रूलिंग द काउंटडाउन, ये है मस्ती टॉप 20। नाउ पंपिंग अप योर थर्सडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स, द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स।
1: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
2: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
2: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर अब सिर्फ एक क्लिक दूर,
3: जीजी।
2: कृषि वल नट्स ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com।
3: GGMart, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. रेडियो मस्ती 24/7 पर इस समय टाइम है हमारी बॉलीवुड की अपडेट का. तैयार हैं आप? चलिए देखते हैं तैयार हैं कि नहीं. मंडे कॉफी का बेस्ट पार्टनर द मॉर्निंग शो ऑन रेडियो मस्ती 24/7 न्यूज. भाई अगर कोई मिसिंग है स्क्रीन से डज नॉट मीन कि वो इंसान अब वापस नहीं आ सकता. बात कर रही हूँ बिपाशा बासु की. Well, 6 साल हो चुके हैं after her OTT debut with the thriller Dangerous that happened in 2020 and she is back to work and this time with a crime thriller जो कि हंसल मेहता बना रहे हैं. और पता तो कुछ ऐसा चला है कि बिपाशा बासु ने शूटिंग भी शुरू कर दी है for मेहता's next which is titled बाराबंकी and this is of course मुंबई की बात हो रही है शूटिंग की. इसको अडेप्ट किया जा रहा है फ्रॉम द बाराबंकी नार्कोस विच इज बस्टिंग इंडियाज मोस्ट नोटोरियस ड्रग कार्टेल. और इसको लिखा रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर आलोक लाल ने जो क्राइम थ्रिलर है. इट इज सेट इन 1984 और काफी इंस्पायरिंग कहानी है ऑफ हाउ लाल द आईपीएस ऑफिसर ही लेड अ मैसिव ओपियम रेड ऑपरेशन इन उत्तर प्रदेश का बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट. अब इसमें और कौन दिखने वाले हैं? विशाल जेठवा एंड सनी कौशल. एंड ये जो सीरीज है बहुत ही ग्रिपिंग रियल लाइफ फर्स्ट an account of dismantling the powerful drug cartels by the IPS officer. Well, और co-produce कौन कर रहा है? प्रबलीन कौर, जिनको शायद आपने Made in India, The Titan Story से बिल्कुल पहचान जाएंगे आप. Alright, while it is still unclear कौन सा role play कर रहा है, हम ये भी सुन रहे हैं कि जो भी trusted staff और network of informers रहे of the IPS officer, वो भी देखे जाएंगे इसमें. Well, this is very very exciting. As we know, बिपाशा बासु जो इस समय वापस आ रही हैं on the screen after having her baby Devi in 2020 has a powerful role of course in this one. बड़ा ही strong connection है to the protagonist. इससे ज़्यादा बताने का क्या फायदा? देखने के लिए तैयार रहेंगे, right? Radio Masti 24/7 पर मैं अगर कहूँ
3: तो जैसे खोया हूँ.
2: ओम शांति ओम.
3: कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ?
2: सुने साथ साथ, what a beautiful track, isn't it?

0: कुछ पुरानी धुनें, कुछ भूली बिसरी यादें,
1: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार,
0: कोई आवाज, कोई साज। सिनेमा की दुनिया के किस्से रुलाते, हंसाते, उदासी भरे, खिलखिलाते किस्से। समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से।
2: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन जैमिंग। जिस भजन जैमिंग मूवमेंट ने हजारों को एक साथ गाने पे मजबूर कर दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैक स्टेज सिबलिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, और जब पूरा हॉल एक साथ गाएगा वो बनेगा द रियल बैक स्टेज सिबलिंग्स एक्सपीरियंस। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। Not your usual sit and watch show. Sing along, clap along, jam along. Bhajan jamming with backstage siblings. Tickets on Sistic. Book now.
3: The Masti Partner Event.

0: और अब इस अमेजिंग से सूफी मैशअप के बाद में हो जाए एक अमेजिंग सी खबर। चलिए सिंगापुर की इकोनॉमी की बात करते हैं।
1: सीरियस हेडलाइंस With a not so serious vibe, only on the morning show on Radio
0: Mas. IRAS, जी हाँ, Inland Revenue Authority of Singapore ने कलेक्ट किया है $97.3 billion in tax revenue in the 25-26 financial year, up 9.4% from the previous financial year, driven by stronger economic activity and consumer spending. Well, IRS का डेटा डेटिंग बैक टू 2002, ये है हाईएस्ट टैक्स कलेक्शन ऑन रिकॉर्ड। जी हाँ, अब आप सोचिए कि ये जो अमाउंट है, इट इज अकाउंटिंग फॉर 74.8% ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑपरेटिंग रेवेन्यू एंड वाज इक्विवेलेंट टू 12.3% ऑफ सिंगापुर्स जीडीपी। Corporate income tax, it has remained the largest source of revenue, rising to $34.4 billion from $30.9 billion in the previous financial year and accounting for 35.4% of total collection. GST, it is the second largest contributor at 22.3%, bringing in $21.7 billion, up from $20 billion previously, reflecting higher consumer spending. Individual income tax collections, wo bhi badh gaye hain $20.9 billion than as compared to $19.1 billion, making up 21.5% of total tax revenue. Property tax, stamp duty contributed $6.9 billion and $7.3 billion respectively. Ab tax contribution ki jo betting wala contribution hai, $3.6 billion raha, while withholding tax contributed $2.5 billion. IRAS ne process kara hai close to $1.2 billion in grants and payouts to about 126,200 businesses during the year through various support schemes such as progressive wage credit scheme, senior employment credit and CPF. ट्रांजिशन ऑफसेट। टैक्स अथॉरिटीज ने कहा कि जो कंप्लायंस है वो काफी स्ट्रॉन्ग रहा। एरियाज फॉर इनकम टैक्स, जीएसटी एंड प्रॉपर्टी टैक्स एट 0.64% ऑफ नेट टैक्स असेस्ड, स्लाइटली लोअर देन द 0.66% प्रीवियसली। भाई क्या बात है, लग रहा है हर तरफ गुड न्यूज है हमारी इकोनॉमी के लिए, राइट और एम आई राइट? चलिए सुनते हैं
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 सितंबर 7 पीएम ऑनवर्ड्स सीएससी ऑडिटोरियम टू सेंसन रोड। टिकट $60 ऑनवर्ड्स। कॉन्टैक्ट एंड पे नाउ 8138279 0। इश्क सूफियाना, इश्क सूफियाना बाय अमित धमेलिया।
1: मस्ती पार्टनर इवेंट।
2: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
3: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
4: Namaste, bahno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: your passport to the world every Monday morning, from global headlines to a pinch of Bollywood spice. The Morning Show with Renuka, 7 a.m. Mondays.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
2: Check it out.
0: तो आइए, तीसरा घंटे में आपका स्वागत है। रेडियो मस्ती 24/7 पर चल रहा है सुबह 7 बजे से हमारा और आपका ही खास शो, जिसको कहते हैं हम द मॉर्निंग शो। सुबह का असली वेक अप कॉल द मॉर्निंग शो। और द मॉर्निंग शो में आपका स्वागत करती हुई रेणुका यहाँ पर। जी हाँ, आवाज ऊपर नीचे इसलिए हो रही है क्योंकि बताया ना आपको, हेज, जी हाँ, इस वीकेंड पर जरा थोड़ा ऊपर नीचे हो गई सिंगापुर में। पर चलिए, अब तो अच्छी खबर मिल ही चुकी है कि अब बाकी सब कुछ मॉडरेट रेंज में आ चुका है। लेकिन कुछ चीजें मॉडरेट रेंज में नहीं है, और हम बात कर रहे हैं द शेमफुल रेसिस्ट एंड ज़ेनोफोबिक ऑनलाइन कमेंट्स अबाउट द नेपाल टिबेट डिजास्टर एंड सिंगापुर एयरलाइंस इन्वेस्टमेंट इन एयर इंडिया। ऐसा कहा सीनियर मिनिस्टर के शनमुगम ने इसी वीकेंड पर। रोज रिपोर्टर्स से बात कर रहे थे और मिस्टर शनमुगम ने ये कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिजिटल डेवलपमेंट एंड इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो आस्किंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू रिमूव कॉमेंट्स दैट ब्रीच द गाइडलाइंस। मीडिया से पता कुछ ऐसा लगा है दैट दे हैड टू रिमूव सेवरल कमेंट्स बिकॉज दे वर सो नास्टी। आई डोंट नो इफ ऑल द कमेंट्स आर ऑल मेड बाय सिंगापुरियंस, बट आई विल से दिस, द कमेंट्स आर शेमफुल, नास्टी, टोटली अनएक्सेप्टेबल। ऐसा कहा मिस्टर शनमुगम ने, हु इज ऑल्सो होम अफेयर्स मिनिस्टर एंड कोऑर्डिनेटिंग मिनिस्टर फॉर नेशनल सिक्योरिटी। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने पुलिस को कहा है टू लुक इन टू दीज कॉमेंट्स। वेल, अंडर द सोशल मीडिया मॉडरेशन पॉलिसी, यूजर्स जो पोस्ट करते हैं हेट स्पीच, रेसिस्ट या ऑफेंसिव कमेंट्स, उनको ब्लॉक किया जाता है फ्रॉम कमेंटिंग ऑन सेवरल न्यूज सोशल मीडिया पेजेस। हमारे भी पेज पर जब हम कुछ ऐसी न्यूज डालते हैं और कोई नास्टी कमेंट्स लिखते हैं तो हम भी उनको ब्लॉक कर देते हैं। मैं बात कर रही हूँ मस्ती मीडिया नेटवर्क की। वेल, बहुत से वाइड स्प्रेड परसिस्टेंट कमेंट्स, उनको बंद करके, उनको हाइड करके, उनको ब्लॉक करके, बहुत से हमारे जो सिंगापुर के एजेंसीज हैं उन्होंने रिपोर्ट भी किया है। एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एलेक्स याम जो है, उन्होंने कॉल आउट किया ऐसे कमेंट्स अर्लियर इन द वीक, सेइंग दैट दे आर नॉट जस्ट रेसिस्ट बट डाउनराइट हार्टलेस। At this point, 9 Singaporeans remain missing after devastating floods caused massive destruction in Nepal last week. And Mr. Shanmugam ne bahut se aise examples diye online, including, no, they are not our own, I only see Indian faces here, this kind of stuff. And I have also in multiple shows said, hamare andar ka jo insaan hai, wo kahan hai is time par? Really, it's very, very shameful. Agar koi racist attacks karte hain, chupke, aisi situation mein hi kya, kabhi bhi.
1: Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
2: Check it out.

0: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है। यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। This is Masti Madness on Radio Masti 24/7. Josh Mehra.
2: Saturday night ka plan? Party? Concert? Ya phir bhajan jamming? जिस भजन जैमिंग मूवमेंट ने हजारों को एक साथ गाने पे मजबूर कर दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिबलिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, और जब पूरा हॉल एक साथ गाएगा वो बनेगा द रियल बैकस्टेज सिबलिंग्स एक्सपीरियंस। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। नॉट योर यूजुअल सिट एंड वॉच शो, सिंग अलोंग, क्लैप अलोंग, जैम अलोंग। Bhajan Jamming with Backstage Siblings. Tickets on Sistic. Book now.
3: It's a Masti Partner event.

0: on Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style anywhere anytime.
1: All right, इस समय चलिए कुछ सिंगापुर की खबर हो जाए. Commuters have been able to use Apple Pay Express mode on Singapore's MRT and LRT since mid-August. और ये जो फीचर है, it is all set to be extended across the entire public transport network by the end of 2027. ऐसा कहा LTA ने इसी वीकेंड पर. Serious headlines with a not so serious vibe only on. भाई वैसा है कि सिंगापुर में अगर आपने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है ये एप्पल पे एक्सप्रेस मोड, तो नाउ इज द टाइम. Express mode jo hota hai na, it allows commuters to tap in and out using their iPhone or Apple Watch without waking or unlocking the device or authenticating with Face ID, Touch ID, passcode, making fare payments quicker and more convenient. Buses mein the feature currently works only with enhanced card readers which were first announced on LTA's Facebook page in June. Aur ye jo readers hain progressively roll out ho rahe across the bus fleet, aisa kaha LTA ne. LTA ne pehle ye bhi bataya tha ki jo enhanced card readers hain they have larger display, sharper visuals, faster updates on Simply Go transactions. They also allow commuters to tap anywhere on the screen to pay the fares. टेस्टिंग ये जो नए रीडर्स हैं अंडर रियल वर्ल्ड ऑपरेटिंग कंडीशंस हमें अलाउ करता है टू इवैल्यूएट देयर परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी बिफोर दे आर रोल्ड आउट अक्रॉस द फ्लीट. दिस विल हेल्प इंश्योर अ स्मूदर एंड मोर यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस फॉर कम्यूटर्स. अब बताइए इससे ज्यादा आसान क्या हो सकता है. ऑनेस्टली मैं US, यूरोप कहीं भी अगर ट्रैवल किया है मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट MRTs में, ट्रेन्स में, लोकल ट्रेन्स में, तो कहीं भी इतना आसान नहीं है, इतना मैं बता सकती हूँ. तो LTA का ये जो टारगेट है टू इंट्रोड्यूस Apple Pay Express मोड अक्रॉस द एंटायर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बाय द एंड ऑफ 2027, ये हमको वाकई बहुत ही ज्यादा पैम्पर और खराब करने वाला है. हम कहीं भी जाते हैं सिंगापुर से बाहर, हम कहते हैं यार घर चलो यार, बस यही हमें पसंद है. पार्टी चले, सिंगापुर में चले और हर चीज एकदम टेक्नोलॉजिकली सैवी हो, मजा आ जाए, है ना. गुड मॉर्निंग एवरीवन.

0: जब हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं
1: one four.
0: और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं. Presenting the encore of your favorite shows. Another day, another time. For your listening pleasure only. Because super hits deserve a repeat. Check out the encore show schedule on our app menu.
2: Only on Radio Musti 24/7 Live. A part of Musti Media Network Singapore.
3: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ.
4: शाम की चाय हो ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग
3: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ.
4: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर.
5: जीजी
4: कृषि वल नट्स ओनली ऑन GGMartOnline.com. प्रीमियम कैश्यूज कैलिफोर्निया आमंड्स पिस्ताचियोस पम्पकिन सीड्स मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस. बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com.
5: GGMart, your personal grocer.

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: All right, at this point, I do want to draw your attention to हमारा next जो बहुत ही अमेजिंग सा फेस्टिवल होता है, जिसका नाम होता है, क्या होता है? गणेश चतुर्थी. जी हाँ. सुबह का असली वेक अप कॉल द मॉर्निंग. आप जानते हैं कि गणेश चतुर्थी में जितने भी हमारे यहाँ पर सुनने वाले हैं, बहुत सारे इनमें से ऐसे होते हैं जो कि घर पर गणपति बप्पा को लेकर आते हैं. एंड ऑफ कोर्स दोज डेज आर एब्सोल्युटली मेस्मराइजिंग. नहीं तो भाई, हमारा काम है यहाँ पर आप तक वो खबरें पहुँचाना जो कि आपको टोटली आपकी लाइफ में मज़ा दिला दे. सो वेल, आप जा सकते हैं 21 कफ रोड, जो है ज्योति, आप अच्छे से जानते हैं ज्योति फ्लावर एंड फ्लावर शॉप को. एंड वो जो दुकान है ना, उसका एक गणपति का प्रॉपर शोरूम है. जी हाँ, एंड यू कैन नॉट मिस इट. व्हेन यू गो देयर यू विल सी 6 inches के गणपति से लेकर द मैक्सिमम साइज दैट यू कैन थिंक ऑफ, राइट? जस्ट अमेजिंग, ब्यूटिफुल. अगर आपको घर पे रखना है, ऑफ कोर्स गणपति को लेकर आना है फॉर गणेश चतुर्थी, तब भी इट्स अमेजिंग. एंड अगर आपको परमानेंटली भी एक सुंदर सी मूर्ति की तलाश है, देन दिस इज एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू गो. इट्स 21 कफ रोड गाइस, वेरी क्लोज टू द कैंबन लेन, जहां पर मेन ज्योति का आउटलेट है. एंड ऑफ कोर्स वहां जाएंगे आप तो यू विल सी दैट स्टार्टिंग $35 ऑनवर्ड्स देयर आर सम अमेजिंग पीसेस. उनका इंट्रिकेट आर्ट वर्क देखिए आप, उनका काम देखिए, उनके कपड़े देखिए, उनकी ज्वेलरी देखिए, यू विल फील दैट नहीं, ये तो इज अ मस्ट बाय. आई मस्ट टेक एटलीस्ट वन टू माय होम फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स दिस सीजन. तो जाइए 21 कफ रोड. एंड दैट्स नॉट ऑल गाइस, अगर अब से लेके 12 तारीख तक, जी हाँ, टिल द 12th ऑफ सितंबर, इफ यू सेंड अस द रिसीट ऑफ व्हाट यू बॉट, दैट इज गणपति का जो आपने मूर्ति खरीदी है उसकी आप रिसीट हमें भेज सकते हैं, तो देन यू स्टैंड अ चांस टू विन द पर्ल नेकलेस. जी हाँ, जो हमारा लिए यहां पर इंतजार कर रहा है और बिल्कुल आपको देने के लिए हम बेताब हैं उसको, क्योंकि दैट्स द बिगिनिंग ऑफ द रियल फेस्टिविटीज, राइट? तो भेज दीजिए हमको. एंड ऑफ कोर्स कमिंग अप नेक्स्ट इज अ ब्यूटीफुल ट्रैक, जिसको चलाए बिना मैं कहां रह पाऊंगी. आफ्टर ऑल, गणपति बप्पा मोरिया का सवाल है. गुड मॉर्निंग.
3: This Ganesh Chaturthi, bring home a bappa you simply can't take your eyes off. Vibrant colors, gorgeous ornaments, beautiful poses, mesmerizing detailing, eco-friendly and more. Har Ganpati idol apne aap mein khas. Welcome bappa for Ganesh Chaturthi or choose one to be a beautiful part of your home forever. See the magnificent collection at Jyoti Stores Ganpati Showroom, 21 Kaff Road. Come for the variety, leave with your bappa.

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी, लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Musty 24/7 Live.

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: राइट अब इस घंटे का जो बॉलीवुड की खबर है उसको भी मैं आपको बिल्कुल पहुंचा दिए देती हूँ. वेल आई एम टॉकिंग अबाउट नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई सितंबर 3rd को 1 आवर 55 मिनट्स में एक ऐसी फिल्म. आपने देखी है या नहीं ये मुझे अभी पता लग जाएगा.
3: मंडे कॉफी का बेस्ट पार्टनर द मॉर्निंग शो ऑन रेडियो मस्ती 24/7 न्यूज व्यूज एंड अ पिंच मस्ती.
2: जी बिल्कुल बात कर रही हूँ मैं गांधारी की. देयर इज एब्सोल्युटली समथिंग इनडिस्टिंक्टिव अबाउट अ मदर्स फियर जब उसका बच्चा जो है मुसीबत में होता है. इट टर्न्स इनटू अ मेजर मेजर मेजर सिचुएशन. वल्नरेबिलिटी को भी किस तरह से स्ट्रेंथ और ग्रीफ को रेज में कन्वर्ट कर सकता है. गांधारी इज अ रियल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू बानी जो एक ऐसी माँ है वो रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द डिसअपीयरेंस ऑफ हर डॉटर एंड देन शी इज ऑल आउट एंड शी डिसाइड्स कि भाई आई एम गोइंग टू एंटर द वर्ल्ड वेयर द ट्रूथ इज बरीड एंड आई एम गोइंग टू गेट माय डॉटर बैक. आई एम गोइंग टू फिगर आउट द लेयर्स ऑफ क्राइम डिसेप्शन बिट्रेयल. देवाशीष मखीजा की डायरेक्शन है और रिटन एंड प्रोड्यूस बाय कनिका ढिलन. ये जो फिल्म है इसमें पर्सनल ड्रामा देख सकते हैं आप, इमोशंस, जर्नी इस तरह की और तापसी पन्नू की एक्टिंग बहुत ही अमेजिंग बताई जा रही है. सो वेल आई हैव नॉट वॉच्ड इट गाइस येट लेकिन आप डेफिनेटली जाके देख सकते हैं. बात कर रही हूं मैं गांधारी की विच इज नाउ अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स. इसी के साथ में चलिए अगली खबर क्या है. सुहानी शाह. जी हाँ आपने सुहानी शाह की टिकट अभी तक ली है या नहीं ली है आप अच्छे से जानते हैं. हमने आपसे कुछ सवाल पूछे हैं और अगर आप हमें लिख देते हैं उसका सही जवाब देन यू कुड बी द विनर ऑफ सुहानी शाह का 1+1 ऑफर. दैट मींस अगर आप उनके हाईएस्ट कैटेगरी की टिकट एक खरीदते हैं तो एक आपको फ्री मिलती है. अगर आप उसके लोएस्ट की खरीदते हैं तो फिर ठीक है वो भी आपको एक फ्री मिलती है. बट सबसे पहले यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन कि सुहानी शाह का जो इवेंट है विच इज स्पेल बाउंड वो कब और कहां होने जा रहा है. द मोमेंट यू टेल मी 9151896 पर हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए या हमारे मैसेंजर पर लिख दीजिए फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं भी ये जवाब. एंड देन ऑफ कोर्स यू स्टैंड अ चांस टू बी अ पार्ट ऑफ दिस 1+1 ऑफर व्हिच इज ओनली बाय द वे अवेलेबल फॉर मस्ती 24/7 के हमारे लिसनर्स. गुड मॉर्निंग.
4: Aamir Khan wondered.
5: Wow. Look, I could have thought of anything. That's amazing. Yeah.
4: Salman Khan wanted answers.
6: Kaise kiya ye?
4: R. Madhavan said.
7: Awesome. You're very good, yeah. Very well done.
4: And Boman Irani?
8: I say this with great respect. This is actually it's blown my mind.
4: Sabhi ka ek hi sawal. Kaise kar leti hai Suhani Shah ye kamaal?
9: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhan.
4: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wow! Wonderful escapades and epic encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer, People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave Spellbound with Suhani Shah.
10: How do you know these things? Stop reading my mind!

की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti 24/7 Live Pe. Kinniya, kinniya,

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: और इस समय जाने से पहले मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सी खबर देना चाहती हूँ कि बैकस्टेज सिबलिंग्स, जी हाँ, आपने उनका नाम सुना है? नहीं सुना है? क्या बात कर रहे हैं आप? अरे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तक ने अपने मन की बात में मेंशन कर दिया और आपने नहीं सुना है? सुबह का असली वही, जी बिल्कुल वही दोनों, वेरी यंग एक्चुअली द सिबलिंग्स, एंड इनका नाम क्या है बताइए बताइए, प्राची और बता नहीं सकेंगे आप, राघव। जी हाँ, दोनों के दोनों आ रहे हैं 26 सितंबर को शाम के 7:30 बजे 90 मिनट का नो इंटरमिशन एब्सोल्युटली सनटेक सिंगापुर कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर में होने जा रहा है उनका ये खास कार्यक्रम, जिसे हम कहते हैं भजन का सत्संग। जी हाँ, इट्स जस्ट ब्यूटिफुल। इट्स, आप सोचिए कि आप बैठे हैं उस हॉल में, एंगेज थिएटर में, वहां पर आपके साथ बहुत से और लोग बैठे हैं और ये राघव और प्राची जो बैक स्टेज सिबलिंग्स हैं वो आकर समा बांधना शुरू करते हैं। आप सभी के सभी टोटली मेसमराइज हो जाते हैं। एक भजन जैमिंग फॉर्मेट कह लीजिए, जिसमें कि बॉलीवुड भजन

0: updated on at least some aspects of what's happening around the world. Filhal ke liye, be good, be shararati. Milti bahut hi jald. Take good care. Bye for now.
1: Saturday night ka plan? Party? Concert? Ya phir bhajan jamming? जिस भजन जैमिंग मूवमेंट ने हजारों को एक साथ गाने पे मजबूर कर दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिबलिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, और जब पूरा हॉल एक साथ गाएगा वो बनेगा द रियल बैकस्टेज सिबलिंग्स एक्सपीरियंस। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। नॉट योर यूजुअल सिट एंड वॉच शो, सिंग अलोंग, क्लैप अलोंग, जैम अलोंग। Bhajan jamming with backstage siblings. Tickets on Sistic. Book now.
2: The Masti Partner Event.

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे। फिलहाल तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे
2: कैफे कैफे। जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
3: आई लव यू रसना।
2: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। योर डोज ऑफ 90s नॉस्टैल्जिया, मस्ती 90s मिक्सटेप विद आपकी 90s वाली अंतरा, थर्सडेज 11 AM ऑनवर्ड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन जैमिंग। जिस भजन जैमिंग मूवमेंट ने हजारों को एक साथ गाने पे मजबूर कर दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिबलिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, और जब पूरा हॉल एक साथ गाएगा, वो बनेगा द रियल बैकस्टेज सिबलिंग्स एक्सपीरियंस। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। नॉट योर यूजुअल सिट एंड वॉच शो, सिंग अलोंग, क्लैप अलोंग, जैम अलोंग। Bhajan Jamming with Backstage Siblings. Tickets on Sistic. Book now.
4: It's a Masti Partner event.

0: नमस्कार आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
0: आमिर खान वंडर्ड,
2: वाओ, लुक, आई कुड हैव थॉट ऑफ एनीथिंग, दैट्स अमेजिंग।
0: सलमान खान वांटेड आंसर्स,
3: कैसे किया ये?
0: आर माधवन सेड,
3: ऑसम, यू आर वेरी गुड यार, वेरी वेल डन।
0: एंड बमन ईरानी,
4: आई से दिस विद ग्रेट रिस्पेक्ट, दिस इज एक्चुअली इट्स ब्लोन माय माइंड।
0: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
5: एनीबॉडी टॉक्स अबाउट मैजिक इन द कंट्री, आई वांट देम मैजिक सुहानी।
0: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wow! One Soul Escapades and Epic Encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer, People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
6: How do you know these things? Stop reading my mind.
7: न करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे,
0: पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे, कैफे, कैफे, कैफे, कैफे।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: मंडे का एक सीन होता है ना सिंगापुर, सुबह से सब कुछ थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मोड में होता है। एमआरटी पकड़ो, कॉफी ले लो, इनबॉक्स खोलो, कैलेंडर देखो, मैसेजेस चेक करो और एक पॉइंट पे लगता है यार वीकेंड सच में हुआ भी था या दैट वाज जस्ट अ ड्रीम, सपना ही था। हेलो सिंगापुर, दिस इज मी मुग्धा और मंडे का मूड थोड़ा और इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आपके अपने मुग्धा लेकर आ चुकी है मस्ती हैंगआउट का एक नया मंडे एडिशन। ऑफिशियली ये स्टार्ट हो रहा है ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, लेकिन अगर आप हमें इस नाम से ऐप पर ढूंढ रहे हैं तो नहीं मिलेंगे क्योंकि ऐप भी ना हमारा नाम बदल गया है, दैट इज मस्ती मीडिया ने, बाकी सब वैसे ही है और नाम बदलने के साथ अपग्रेड भी हुए हैं। अब अगर आज का शो बाय द वे मान लो आपके पास वक्त नहीं है सुनने का और आपको लगता है ओ माय गॉड मैंने मुग्धा को नहीं सुना तो कैसे मेरी जिंदगी आगे बढ़ेगी, आई विश ऐसे ही हो, तो आपके पास एक ऑप्शन है, पता क्या कर सकते हो आप अपने इस नए अपग्रेडेड ऐप में, जो आप इसको इंस्टॉल करोगे आपको पता लगेगा देयर इज अ वेरी यूनिक फीचर, आप अपने फेवरेट शोज को जैसे कि अपने समर को बाहें फैला करके रिकॉर्ड कर लो, भर भर के रिकॉर्ड कर लो, कोई भी शो जो आपका मन करे, रिकॉर्डिंग फीचर है हमारे नए ऐप में, शो को रिकॉर्ड करो, अपने जो लाइब्रेरी है इंटरनल उसमें रखो और जब मर्जी पड़े कानों में हेडफोन लगा के हमारे शो को वापस सुन लो। देखा, कहीं भी रहो हम तो साथ साथ हैं। खैर चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं। मंडे को हम ना ओवर मोटिवेट नहीं करेंगे, न्यू वीक न्यू यू ऐसा कोई प्रेशर नहीं लेंगे, बस थोड़ा मैजिक, थोड़ी मस्ती, थोड़ा सिंगापुर का लोकल फ्लेवर, इंटरेस्टिंग कहानियां, थोड़ा बॉलीवुड एंड रैंडम बातें जो आप कहीं सोच के रहे हो यार ये भी होता है, ऐसी बहुत सी बातें। वैसे जस्ट फॉर चेंज आपको बता दूं आज 7 सितंबर है, किसी ने बताया तो होगा नहीं आपको, आज इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, और इससे जुड़ी बहुत इंटरेस्टिंग बात मेरे पास है जो कि सिंगापुर के लिए बहुत सही तरीके से लागू हो रही है। साथ में है इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कॉपरेशन, तो ये सारे दिन आज के दिन मनाए जाते हैं, मतलब ये सारे डेज आज के दिन मनाए जाते हैं, तो जो ये जो भी आप डे सेलिब्रेट करना चाहो कर सकते हो, अदरवाइज मेरे साथ शो में आगे बढ़ सकते हो। मुझे ना मंडे का एक रूल बहुत पसंद है, स्टार्ट भले परफेक्ट ना हो लेकिन स्टार्ट हो जाना चाहिए।

0: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय सिंगापुर, मैंने आपसे कहा था ना कि वो वर्ल्ड क्लीन एयर डे ब्लू स्काई समथिंग समथिंग से एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर मेरे पास है। आपको पता है मंडे का सीन एक बड़ा सिंपल होता है, वीक अभी स्टार्ट ही हुआ होता है और ऊपर से हवा जो है हमारा मूड टेस्ट कर रही है। बताओ, सिंगापुर में तो फिलहाल यही हाल चल रहा है। मतलब कुछ तो लाइफ में हमारे ऊपर इजी रहने दो यार। कल से हेज को लेकर के कंसर्न थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। सेंट्रल सिंगापुर में 24 आवर्स PSI अनहेल्दी रेंज में आ चुका है और अगर एयर क्वालिटी और ज्यादा वर्सन होती है तो बिजनेस, आउटडोर एक्टिविटीज, फैमिली प्लान्स, इन सब के एडजस्टमेंट्स आपको करने पड़ेंगे। फिलहाल काफी जगहों पे बिजनेस तो एज यूजुअल है बट एडवाइस बहुत सिंपल है, लोग आउटडोर एक्टिविटी थोड़ी अपनी लिमिटेड रखिए एंड स्पेशली अगर आपके एयर क्वालिटी की वजह से आपको जरा सा भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। एंड दिस इज द पॉइंट, मनी प्लानिंग से मुझे लगता है ये बात बिल्कुल सही हो जाती है। जब बाहर का प्लान थोड़ा अनसर्टन हो जाए और आपके पास ऑप्शन ना हो, देन आई कम हियर फॉर लाइक एज अ सेवियर आपको बचाने के लिए। इंडोर एरान जो है प्रैक्टिकल शॉपिंग का ऑप्शन बहुत ज्यादा सेंसिबल तरीके से आपको अपनाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको कौन बचाएगा? Yes, जी मार्ट। लेकिन यहाँ पे ना 11 से 25 सितंबर तक उनके एक मिड ऑटम सेल चल रही है विद ऑल द क्रशेबल नट्स का रेंज। नोवेना साइड में है, वेलोसिटी नोवेना, फ्लेवर्ड क्लासिक ड्राई फ्रूट्स, नेचुरल, केमिकल फ्री, हलाल सर्टिफाइड ऑप्शंस, प्लस फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए फेस्टिव गिफ्ट पैक भी है। तो सेल का पूरा फायदा उठाइए एंड दे हैव दीज अमेजिंग रेंज ऑफ सम अमेजिंग नट्स। मतलब ये जो गिफ्ट पैक्स हैं इनको देख करके तो मजा ही आ जाता है। दे आर वेरी नेचुरल, दे आर ऑल केमिकल फ्री और जैसे कि मैंने आपको बताया दे आर हलाल सर्टिफाइड ऑल्सो, तो आपको इसकी भी चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप चाहें तो जा सकते हैं जीजी मार्ट के 12 वेलोसिटी नोवेना या फिर जीजी मार्ट online.com पे घर बैठे ऑर्डर करो, जो कि फिलहाल के लिए तो सबसे सेफेस्ट पार्ट है। राइट, आई एम ऑलवेज राइट।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behnor bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
1: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
1: कृषि वल नट्स ओनली ऑन GTMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GTMartOnline.com।
2: GTMart, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: Hi Singapore, now there's a question, आज का सवाल। JB जाना अगर सिर्फ 5 मिनट की ट्रेन राइड हो जाए तो आप सबसे पहले क्या प्लान करोगे? शॉपिंग, फूड या बस अरे चलो नया चल के आते हैं वहाँ देख लेंगे क्या करना है? Yes, a very spontaneous trip, right? क्योंकि Woodlands North से एक काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। जोहर बारू सिंगापुर RTS लिंक का जो Woodlands North स्टेशन है कंप्लीट हो चुका है और प्रोजेक्ट 2027 आपके ऑपरेशंस की तरफ एक और स्टेप क्लोज है। अब आप कहेंगे 2027 तो हेलो जागो मोहन प्यारे, अगस्त इज जस्ट लाइक एंड हो चुका है, अगस्त खत्म हो गया, सितंबर में हम आ चुके हैं एंड अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने बाद हम 2027 में होंगे। ओ माय गॉड सीरियसली आउच, हाँ सच में आई पिंच्ड माइसेल्फ। एनीवे तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है 4 किलोमीटर लिंक होगा सिंगापुर के वुडलैंड्स नॉर्थ को जो जोहर बारू के बुकिट से उसको कनेक्ट करेगा, ठीक है। और ट्रैवल टाइम एक्सपेक्टेड होगा अराउंड 5 मिनट्स, है ना। और सिंगापुर साइड पार स्टेशन डायरेक्टली थॉमसन ईस्ट कोस्ट लाइन का वुडलैंड्स नॉर्थ MRT स्टेशन से कनेक्ट हो जाएगा। सो ट्रांसफर भी काफी सीमलेस रखा गया है। डेली अगर आप राइडरशिप देखेंगे तो अराउंड 40,000 पैसेंजर्स आर एक्सपेक्टेड टू यूज दिस लाइन। मुझे तो सबसे अमेजिंग फ्यूचर सीन पता है क्या लग रहा है, आज हम JB ट्रिप के लिए ट्रैफिक चेक करते हैं, चेक पॉइंट टाइमिंग देखते हैं, स्नैक्स प्लेलिस्ट सब प्लान करते हैं। कल ऐसे कोई कैजुअली उठ के बोलेगा यार लंच सोच रहे JB में कर ले, है ना। जुप अंदर दे, 5 मिनट का तो रास्ता है यार, सीरियसली बस 2-4-5 भी नहीं, मेरे ख्याल से 3-4 महीने की बात है ये सपना सच हो जाएगा। तो मंडे को ये अपडेट काफी अच्छा लगा मुझे, है ना। वीक अभी स्टार्ट ही हुआ है और फ्यूचर जो वीकेंड प्लान्स है दे आर ऑलरेडी वेरी इजी कम्यूटिंग प्लान्स और वो हमारे जैसे देशों में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। दिस इज मी मुग्धा, आई विल बी राइट बैक, कहीं जाइएगा नहीं, स्टे कनेक्टेड।

0: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique. Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides, and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food, and community come together. Saturday night ka plan? Party? Concert? Ya phir bhajan jamming? जिस भजन जैमिंग मूवमेंट ने हजारों को एक साथ गाने पे मजबूर कर दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिबलिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, और जब पूरा हॉल एक साथ गाएगा वो बनेगा द रियल बैकस्टेज सिबलिंग्स एक्सपीरियंस। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। नॉट योर यूजुअल सिट एंड वॉच शो, सिंग अलोंग, क्लैप अलोंग, जैम अलोंग। Bhajan Jamming with Backstage Siblings. Tickets on Sistic. Book now.
1: It's a Masti Partner event.

0: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय सिंगापुर, गणपति बापा को घर लाने की प्लानिंग हो रही है। कर लो भाई, करो करो, कहाँ दिन बाकी है। तो बिल्कुल भी दिन बाकी नहीं है सीरियसली, क्योंकि ना ये जो स्टेज है पूरी फैमिली सडनली जो है एक्सपर्ट बन जाती है यहाँ पे। ये वाला फेस, ये वाली मुद्रा, ये वाली बैठक, ये सूंड इधरनी है, वो हाथ उधरनी है, दुनिया भर के सारे एक्सपर्ट्स आपको मिल जाएंगे। एंड देन यू विल बी कंफ्यूज्ड, ओ माय गॉड, आपको कहाँ जाना है। ज्योति गणपति 21 का फ्लोर, वहां जाइए, पूरे परिवार के साथ जाइए और सबको काम दे दीजिए। चलो अपना अपना गणपति सेलेक्ट करो एंड वी विल पिक द बेस्ट वन। देखो वैसे तो मैं सच्ची बताऊं, गणपति जी व्हाट्स द बेस्ट वन, गणपति गणपति है बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट क्या होता है गणपति में। बट देन वन मोर थिंग, हर कारीगर अपनी कारीगरी दिखाता है, हर कलाकार अपने हिसाब से गणपति को अपनी इमेजिनेशन से उनको रचता है, बनाता है, एंड यही तो उसकी खासियत है। तो मेरे हिसाब से कोई भी फोटो, कोई भी ऑनलाइन इमेज, कोई भी वीडियो उसके साथ वो जस्टिस नहीं करेगा जितना आप खुद जाके जब 21 का फ्लोर पे देखेंगे तो आपको पता लगेगा। आइडल्स का जो कॉस्टिंग है, वैसे तो वहां जाएंगे तो मालूम पड़ेगा, बट स्टिल जस्ट फॉर एन आइडिया मैं बता दूं, $30 ऑनवर्ड से शुरू हो रहा है। एंड जो साइजेस है वो है 6 इंच से लेकर के 42 इंच तक। और वैरायटी मैं तो आपको क्या ही बताऊं, मैं आपको बता ही नहीं सकती, बताऊंगी तो जस्टिस होगा ही नहीं। कलरफुल आइडल्स, डिटेलिंग, ड्रेसिंग, एवरीथिंग, मत देखना फोटो, सीधे पहुंचो। एक और एक्स्ट्रा कारण है पता है, देखो आप गणपति जी को तो घर लाओगे लेकिन गणपति आएंगे ना जब, तो गिफ्ट भी लाएंगे अपने साथ में। जब आप उनको परचेज करोगे तो आपको रिसीप्ट मिलेगी, उस रिसीप्ट को आप शेयर करिए 9151-8963 पर हमारे साथ, और हम आपको एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा पर्ल नेकलेस गिफ्ट करेंगे। तो गणपति जी भी आ जाएंगे और आपको गिफ्ट भी मिल जाएगा। देखा है ना इंटरेस्टिंग। अब एक बात देखो, आप कहेंगे यहाँ वहाँ कहाँ जाए, तो बता देती हूँ आपको, 21 का फ्लोर जो है ना गणपति आइडल्स के लिए दैट इज डेडिकेटेड लोकेशन है, वो कैंपबेल लेन से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। फैमिली को बुलाओ, फेवरेट बापा को अपने सेलेक्ट करो, मन से पूरी श्रद्धा से उनको घर ले आओ, रिसीप्ट 9151-8963 पर भेज दो। जब पर्ल नेकलेस मिलेगा ना तो खींच के फोटो भी भेजना, बताना कैसे दिख रहे हो।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय सिंगापुर, वेलकम बैक। जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता दूं कि आप थोड़ा लेट हो गए, पर फिर भी देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। शो के सेकंड आर में एंट्री हम ले चुके हैं एंड दिस आर इज वेरी चटपटा, क्योंकि हम यहाँ पे ना एंटरटेनमेंट की बातें करते हैं। दरवाजा, रास्ता, माध्यम, मीडियम कुछ भी हो सकता है। बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, देश, दैट, सब तो आजकल एक ही खिचड़ी में, मतलब सब सारी खिचड़ी एक ही है। सारे वेजिटेबल्स मिल जाते हैं आपको एक ही जगह पे। देखिए क्या है, फैमिली में ना जब कोई पहला बड़ा स्टेप लेने जा रहा होता है तो एक बंदा ऐसा जरूर होता है जो बोलता है तू जा मैं हूं ना, लेकिन ये वो मैं हूं ना नहीं है। ये जो बड़ा बंदा है ये है सलमान खान। अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा के जो बेटे हैं अरहान खान, बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं। वो एक एक्शन लव स्टोरी के साथ होगा ये। एंड माना जाए तो चाचू सलमान जो है वो फिल्म में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैमियो करेंगे। अराउंड 10 दिन की शूटिंग की ऐसे बात बात चल रही है। अब देखो क्या है ना कि जब फैमिली, ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि जब घर के बच्चे आगे बढ़ते हैं तो अगर आपका कोई जानकार उस फील्ड में है तो जरूर वो घर का बंदा जो है उसको एक बैकअप के लिए साथ में जाता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब घर का बच्चा आगे बढ़ रहा है और घर में इतना बड़ा स्टार है तो वाई नॉट, है कि नहीं? तो हमेशा एक साथ, एक हाथ अगर आपके कंधे पे रहे तो लाइफ इजी हो जाती है, थोड़ा सा टेंशन कम हो जाता है। एंड दिस इज व्हाट व्हेन आई थिंक अबाउट प्राची एंड राघव, नाउ दे आर द सिबलिंग्स, राइट? और ये है बैक स्टेज सिबलिंग्स, और ये बैक स्टेज सिबलिंग्स जो है ये 26 सितंबर को आ रहे हैं सिंगापुर में। इनका एक बहुत अमेजिंग कॉन्सर्ट एक तरह से देखा जाए तो भजन बैठक है सिंगापुर में। ये हो रही है शाम 6 बजे, एंगेज थिएटर 2 सनटेक, और इसके टिकट्स आपको मिलेंगे सिस्टिक पर 26th of September। अब ये कोई कन्वेंशनल कॉन्सर्ट जैसा नहीं है, मैं आपको ये बता देती हूँ। इनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग फंडा है कि द स्टेज इज द ऑडियंस। आप बैठेंगे, आप गाएंगे, आप तालियां बजाएंगे, आप थोड़ा बहुत जैमिंग भी करेंगे, सोलफुल भजन भी हैं, और आप किसी को भी लेके आ सकते हैं, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अकेले भी आ सकते हैं। अगर आपको अकेले अपने साथ वक्त बिताना है, थोड़ा सा अलग एक माहौल चाहिए, दिस इज अ वेरी गुड प्लेस, आप यहाँ आ सकते हैं। इट्स लाइक सबसे अच्छा पार्ट यही है कि 3 generations आर इन वन रूम एंड देयर इज वन वाइब। तो पेरेंट्स, फ्रेंड्स, ग्रैंड पेरेंट्स, एवरीबॉडी, सब आ सकते हैं एक साथ। डेट फिर से नोट करिए, 26 सितंबर शाम 6 बजे से एंगेज थिएटर 2। एंड टिकट्स के लिए आप एक्सक्लूसिवली जाइए SISTIC पर। तो फैमिली हो या फ्राइडे गैंग, देखो बॉलीवुड हो या अपनी नॉर्मल फैमिली, ड्रामा फैमिली, कभी कभी बेस्ट वाइब वही होती है जहाँ पे परफॉर्म कोई एक नहीं करता, पूरा रूम करता है, सब मिलके करते हैं। डेट मत भूलिएगा, मैंने आपको बता दिया।

0: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन जैमिंग? जिस भजन जैमिंग मूवमेंट ने हजारों को एक साथ गाने पे मजबूर कर दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिबलिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, और जब पूरा हॉल एक साथ गाएगा वो बनेगा द रियल बैकस्टेज सिबलिंग्स एक्सपीरियंस। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। Not your usual sit and watch show. Sing along, clap along, jam along. Bhajan jamming with backstage siblings. Tickets on Sistic. Book now.
1: The Masti Partner Event.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: कुछ फिल्में ना जब उनका अनाउंसमेंट होता है तो ऐसी होती है ना जिनके लिए हम जेन्युइनली बोलते हैं अच्छा अब ये वाली बात सीरियसली आगे बढ़ रही है, ओ माय गॉड बढ़ाई दो नहीं बढ़ रही है तो। एंड द सेम थिंग हैपेंस विद मुन्ना भाई 3, ये उनमें से एक है। अर्शद वारसी ने मजाक में कहा है कि संजू ने राजू ईरानी को गन पॉइंट पे रख दिया, मतलब अब तो थर्ड फिल्म बनानी पड़ेगी, बाबा बोल रहे ले तो पिक्चर तो बनानी पड़ेगी वरना बोरी ढूंढनी पड़ेगी। Yeah, exactly. You got where I'm going. तो जोक्स अपनी जगह है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि राजकुमार ईरानी पहले ही कंफर्म कर चुके हैं कि मुन्ना भाई की जो नई फिल्म है स्क्रिप्ट्स पे डेवलपमेंट हो रही है। ऑनेस्टली मुन्ना सर्किट की जो पेयरिंग है उसका चार्म बहुत अलग है। दे आर नॉट सिबलिंग्स बट दे आर सिबलिंग्स, राइट, है ना? हाँ, डायलॉग से पहले उनकी केमिस्ट्री काम करती है, पता होता है क्या होने वाला है। इनकी केमिस्ट्री इतनी कमाल की है कि कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी इतनी अच्छी केमिस्ट्री ना दिखा पाए आपको। सीधे सिचुएशन को भी दोनों ऐसे हैंडल करते हैं कि इमोशंस भी रहते हैं और आप हंसते भी हैं, यही तो खासियत है इनकी। एंड दैट्स व्हाई मुन्ना भाई की अभी तक जितनी भी पिक्चर्स आई हैं, मतलब जितनी भी फ्रेंचाइजी फिल्म्स आई हैं, दे ऑल हैव मेड यू लाफ एंड क्राई एंड दे फैमिली फिल्म्स, राइट। और मुझे इसीलिए ये बहुत अच्छा लगता है, मकबूल भाई को गले लगाना ही बनता है इस पे, ना? तो देखो क्या है ना, मंडे को मुझे अपडेट इसलिए बहुत अच्छा लगा क्योंकि हफ्ता भी शुरू हुआ है, हफ्ता वसूली भी बाकी है, मूड थोड़ा डिसिप्लिन है हमारा और बॉलीवुड कह रहा है कि बस थोड़ा सर्किट मोड ऑन रखो भाई। बात तो सही है, वीकेंड तक जाने के लिए सर्किट मोड ऑन रखना पड़ेगा। अब बस एक चीज चाहिए, अनाउंसमेंट प्रॉपरली लॉक कर दो, लॉक इट लाइक दिस, और संजय दत्त और अर्शद वारसी जो है वो दोनों वापस आ जाएं, कहीं कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन दे दो ताकि हमारी भी जान में जान आ जाए।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: सिंगापुर वीकेंड प्लानिंग चल रही है तो एक ऐसा प्लान बना लो जहाँ पे शॉपिंग, फूड, फन सब मिल जाए। बच्चों को भी लेके जाओ, खुद भी जाओ, पैसे उड़ाओ और कमाओ, दोनों काम हो सकता है। एंड थोड़ा जो कम्युनिटी वाला फेस्टिव फील है वो भी आ जाएगा। नारपानी माउंट बैटन CCIAEC प्रेजेंट्स फेस्टिव बाजार 2026 और ये हो रहा है 27 सितंबर को 10 बजे सुबह से लेकर शाम के 6 बजे तक एट माउंट बैटन CC मल्टीपर्पज हॉल। आपको पता है आपको स्टॉल लगाने का मौका मिलेगा। स्मॉल बिजनेस है, घर से आप काम करते हैं, जैसा भी बिजनेस आप ओन करते हैं, आप यहाँ पे स्टॉल लगा के पूरे सिंगापुर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता सकते हैं कि आपका क्या कलेक्शन, आप क्या काम करते हो। तो पैसे कमाने भी आ जाओ और उड़ाने भी आ जाओ। यहाँ पे जो स्टॉल्स की रेट है वो है $80 पर टेबल, स्टैंडर्ड रेट है, और प्रीमियम की है $100 पर टेबल। GST इज एडिशनल, ध्यान रखिएगा। इंक्वायरीज अगर आप और करना चाहते हैं तो प्लीज एक नंबर नोट कर लीजिए, 8330-2518। अब यहाँ पे लाइव परफॉर्मेंसेज हैं, बाउंसी कैसल है, लकी ड्रॉप प्राइजेस, बच्चों के लिए जॉय राइड्स हैं, खाना पीना तो खैर है ही, अपैरल, फैशन, फूड, स्नैक्स, डेकोर, गिफ्ट सब है। आइए शॉपिंग करिए, शॉपिंग कराइए, बेचिए, खरीदिए, सब कुछ एक जगह पे कर सकते हैं आप। स्टॉल्स लगाइए, दुनिया को अपना हुनर दिखाइए, समझ रहे हैं। इवेंट को सपोर्ट कर रहा है पीपल्स एसोसिएशन और ऑफकोर्स मस्ती मीडिया नेटवर्क तो है ही, तभी तो मैं आपसे बता रही हूँ। तो प्लान बहुत ही सिंपल है, 27 सितंबर को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आप इस फेस्टिव बाजार 2026 का पार्ट जरूर बनिए। ये हो रहा है माउंट बैटन CC मल्टीपर्पज हॉल में। नोटेड नोटेड।

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 September, 7 PM onwards, CSC Auditorium, Tessensen Road. Tickets $60 onwards. Contact and pay now 81382790. Ishq Sufiana by Amit Dhamelia.
3: It's a Masti Partner event.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: कभी कभी ना आंखों के सामने जो दिख रहा होता है वो एक्चुअली होता कुछ और है, और अब लगता है कि बिग बॉस भी इसी गेम में उतर रहा है। डरो मत, बिग बॉस की बात कर रही थी। एक नया सीजन है जो अनाउंस हो चुका है एंड इट्स फुल ऑफ इल्यूजन, थीमी इल्यूजन है बिग बॉस की। मुझे पता है बहुत सारे बिग बॉस फैंस आर इन द हाउस सुबह 10 बजे, 9 बजे, 11 बजे, 12 बजे, ये चलता रहेगा पूरे दिन उनके घर में। पर इसकी जो डिजाइनर है वर्षा जैन, उन्होंने स्पेसेस को ऐसा क्रिएट किया है कि हर कॉर्नर में आपको एक विजुअल ट्रिक मिलेगी, सरप्राइज थोड़ा। अरे ये सच में लगा जैसे रखा था ऐसा वाला। और ये चीजें ऐसी हैं कि इनको देखकर आप बिल्कुल स्पेल बाउंड हो जाएंगे। ओप्स, स्पेल बाउंड, ये भी तो कुछ ऐसा ही है। माइंड बॉगलिंग स्पेल बाउंड वंडर सोल एस्केपेड्स और एपिक एनकाउंटर्स प्रेजेंटिंग सुहानी शाह स्पेल बाउंड। एक मेंटलिज्म एक्सपीरियंस है, अगर आप सिंगापुर में है तो लाइव इन सिंगापुर 20 सितंबर को शाम 6 बजे क्रेटा आयर पीपल्स थिएटर में। शो इंग्लिश में होस्ट होगा तो इट्स गोना बी वेरी इजी फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। और सुहानी शाह इसको लेकर आ रही है एंड शी इज अ वेरी अमेजिंग पर्सनालिटी। आप हमारे ना मस्ती मीडिया के फेसबुक पेज पर जाकर देख सकते हो, सलमान खान के साथ जो उनका कॉन्वर्सेशन है आप दंग रह जाओगे सुन करके। माइंड रीडिंग, मेंटलिज्म, इम्पॉसिबल से लगने वाले मोमेंट्स को ये यूं असली में बदल देती है। बिग बॉस का इल्यूजन स्क्रीन पर आप देख रहे हो। यहाँ सवाल ये है, जब इल्यूजन आपके सामने लाइव हो तो दिमाग कितना संभल पाएगा आपका। टिकट्स आपके SISTIC पर अवेलेबल है, लेकिन अगर आप लाइव देखना चाहते हो तो आपके पास मौका है। मैं आपको एक और मौका दे सकती हूँ, आप मुझे बताइए कि सुहानी शाह का जो शो है वो किस दिन हो रहा है। डेट के दो ऑप्शंस हैं, 20 सितंबर, ऑप्शन टू है 26 सितंबर। दो डेट्स हैं, 20 सितंबर, 26 सितंबर, ए बी, 20, 26, ए बी।

सही ऑप्शन का जवाब भेजिए 9151893 पर और आपके पास मौका है लाइव इसे देखने का. कब कैसे क्यों कहा इसके लिए जवाब भेज दो, अपने आप आपको जवाब मिल जाएगा. समझे?

0: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
1: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
1: कृषि वल नट्स ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com।
2: GGMart, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: This Ganesh Chaturthi, bring home a bappa you simply can't take your eyes off. Vibrant colors, gorgeous ornaments, beautiful poses, mesmerizing detailing, eco-friendly and more. Har Ganpati idol apne aap mein khas. Welcome bappa for Ganesh Chaturthi or choose one to be a beautiful part of your home forever. See the magnificent collection at Jyoti Stores Ganpati Showroom, 21 Cuff Road. Come for the variety, leave with your bappa.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय सिंगापुर शो के थर्ड एंड द लास्ट आर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए थर्ड आर में ना मूड हमारा जरा चेंज हो जाता है और चेंज कर भी देते हैं। मंडे हो, वेडनेसडे हो, फ्राइडे हो, हफ्ते का कोई भी दिन हो, बीच में कभी कभी ऐसी शामें आनी चाहिए। प्लान्स अच्छे लगते हैं जब म्यूजिक सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं होता, पूरा एक्सपीरियंस बन जाता है आपके लिए। एंड दैट्स व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू राइट नाउ। अभी नहीं, मतलब जब होने वाला है उसके बारे में बताती हूँ। परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स प्रेजेंस इश्क सूफियाना बाय अमित दामेलिया। नाम से आपको फील आ जाएगा, सूफी फ्लेवर्स है, सोलफुल वाइब है, लाइव म्यूजिक और एक ऐसी शाम जहाँ पे शाम का माहौल बहुत ही मेलोडियस होगा और इमोशंस भी आपको साथ में मिलेंगे। मेलोडी एंड इमोशन साथ साथ चलेंगे आपके। डेट वापस नोट करो, सैटरडे है 26 सितंबर। वेल नॉट अ वीकेंड, कोई बहाना नहीं चलेगा। 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। एंड ऑल दिस इज हैपनिंग ऑडिटोरियम सिविल सर्विस क्लब एट टेसेंसन, 60 टेसेंसन रोड, ऑफ कोर्स इन सिंगापुर। टिकट्स जो हैं वो आपको $60 और $80 के मिलेंगे। एंड बुकिंग के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो पे नाउ पे, डायरेक्टली पे कर सकते हो बुक करने के लिए, दैट इज 8138-2790। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या है? बुक करो टिकट और क्या। तो अगर सितंबर कैलेंडर में एक ऐसी शाम आपको अपनी ना ऐड करनी है जो थोड़ी म्यूजिकल भी हो, थोड़ी रोमांटिक हो, थोड़ी सूफी हो, थोड़ा इश्क सूफियाना हो जाए, तो दिस इज फॉर यू।
2: इश्क दी
1: मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग नोट कर चुके हैं और बहुत सारे लोग ऐसे जो मिस नहीं करना चाहेंगे। ये शाम ही कुछ ऐसी है। Stay tuned.
3: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.

0: रहना आंखों आंखों में ही रहना आंखों आंखों में ही रहना।
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
2: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste behen aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
4: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 September, 7 p.m. onwards, CSE Auditorium, Tissenson Road. Tickets $60 onwards. Contact and pay now, 81382790. Ishq Sufiana, Ishq Sufiana by Amit Dhamelia.
5: It's a Masti Partner event.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: कुछ लोग जॉब चेंज करते हैं, कुछ करियर स्विच कर लेते हैं और कुछ लिटरली स्ट्रेंजर्स को स्क्रैच करके पैसे कमा रहे हैं। डोंट स्क्रैच योर हेड, somebody is actually being paid to scratch you. I mean, go and scratch your head yourself. Hi, welcome back. This is me, Mugdha. और अब मैं तो यही कहूंगी, सर खुजाइए। I mean, अब जो भी खुजाना है खुद ही खुजा लीजिए, लोग तो पैसे भी कमा रहे खुजा के। Yeah, this is a business. ये मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, I'm sure के लोगों ने पढ़ भी लिया होगा कहीं ना कहीं। एक आदमी है, उसने प्रोफेशनल स्क्रैचिंग सर्विस स्टार्ट करी है। क्लाइंट्स आते हैं, उनकी बैक में, आर्म्स में, जहां जहां खुजली हो रही होती है, ऑन द रिक्वेस्ट वो जेंटली स्क्रैच करता है। एंड रिपोर्टेडली वो स्क्रैच करके आपको पता है 14 लाख पर मंथ कमा रहा है। राइट, 14 लाख रुपए महीना कमा रहा है। पहली रिएक्शन तो मेरी भी थी, ये भी प्रोफेशन है? फिर सोचा, दुनिया में जब पेट ग्रूमिंग, स्लीप कोचिंग, प्रोफेशनल कडलिंग इज अ प्रोफेशन, तो आई एम श्योर स्क्रैचिंग रहा होगा लोगों को अब पता लगा है। स्टोरी का फन पार्ट पता है क्या? कभी कभी ना सबसे वियर्ड आइडिया जो है वो बिजनेस बन जाते हैं और वो आपको लाखों करोड़ों कमा के देते हैं, अंटिल अनलेस कोई और आपकी जगह एक और वैसा बिजनेस शुरू नहीं कर रहा था। Somebody को अपने घर में एक और खुजावे का बिजनेस शुरू कर दे। I mean, हमारे घर में हमारी मम्मियां पापाओं की पीठ कितने सालों से खुजा रहे हैं। They should be paid now officially. बहने भाइयों की खुजाती है। राइट ओके फाइन ओके, बट या दिस इज अ प्रोफेशन, तो ध्यान रखो। मुझे अजीब लगा सुन के, पर दिस इज इट। सिंगापुर में तो मुझे लगता है इसका प्रीमियम वर्जन आ सकता है। बैक स्क्रैच 20 मिनट्स, एड ऑन शोल्डर पैड, मोटिवेशन भी दे दो थोड़ा सा, उसके अलग से ले लेंगे पैसे।
2: कभी कभी आदतें जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है, कभी कभी आदतें वो बिछड़ जाए तो एक सपना लगता है।
1: मंडे का लेसन तो बहुत सिंपल, अगर आपको अपना जॉब बोरिंग लग रहा है, रिजाइन मत करो, पहले मार्केट रिसर्च करो। क्या पता नेक्स्ट मिलियन डॉलर आइडिया किसी रैंडम हैबिट के पीछे छुपा हुआ हो और आपको नहीं पता। सर खुजाते खुजाते याद आ जाए, समझे? Yeah.

0: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.
1: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique. Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joyrides and lucky draws. All to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
2: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
3: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
2: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
3: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
4: जीजी
3: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
4: GG Mart, your personal grocer.

0: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय सिंगापुर, गणपति बाबा के वेलकम की प्लानिंग शुरू हो गई है क्या? अरे क्योंकि देखो क्या है ना कि महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर जो है वो लेकर के आ रहा है गणेश उत्सव 2026 और इस बार सेलिब्रेशन पूरे 14 से लेकर 18 सितंबर तक चलने वाला है। वाह क्या बात है, मेरे बिना बोले नोट कर लिया। ये उत्सव ही ऐसा है, गणेश उत्सव जो है दैट इज फ्रॉम 14th to 18th September। वेन्यू इज ओपन फील्ड बिसाइड हॉलीडे इन 2 Owen Road। ठीक है, 14 सितंबर को सुबह 9 बजे गणेश प्रतिष्ठापना होगी, मतलब गणेश जी स्थापित होंगे और फिर पूरे फेस्टिवल में मॉर्निंग और इवनिंग प्रेयर्स आरतियां होगी, आरती वगैरह होगा एंड हर दिन शाम 7 बजे कल्चरल परफॉर्मेंसेस होंगी। 17th of September को अथर्वशीर्ष पाठन होगा एंड इवनिंग प्रेयर्स के बाद में ढोल ताशा होगा। आई मस्ट टेल यू, ढोल ताशा इज वन ऑफ माई फेवरेट पार्ट ऑफ गणपति। जिस तरह से वो ढोल ताशा परफॉर्म करते हैं, अगर आपने इस गणपति मिस कर दिया, लाइव उसको देखने का जो मजा है, ओ माय गॉड, कोई रॉक कॉन्सर्ट उसके आगे नहीं टिक सकता। मुझे ढोल ताशा इतना पसंद है। 18 सितंबर को शाम 5 बजे जय जय उत्तम के बाद में 8 PM पर उत्तर पूजा की जाएगी एंड दिस होल अमेजिंग इवेंट ऑफ गणेश उत्सव जो कि महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर लेकर के आ रहे हैं इज स्पॉन्सर्ड बाय फोर्टे ग्रुप, ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल, ट्रू केयर क्लिनिक, एथेना ग्लोबल लॉजिस्टिक्स, कूल टाइम, तनिष्क सिंगापुर, बॉक्स मामा। और इवेंट के जो और सपोर्टिंग पार्टनर्स हैं, दे आर पेशवाई, SIFAS, SB जैन स्कूल ऑफ ग्लोबल मैनेजमेंट और सत्यम सार। और ये लोग भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं विद ऑफ कोर्स वी आर द डिजिटल पार्टनर्स मस्ती मीडिया नेटवर्क, राइट। आइडल जो स्पॉन्सर कर रहे हैं गणपति जी की जो प्रतिमा है, इट इज बीइंग डन बाय श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई, सार्वजनिक गणपति ट्रस्ट पुणे। तो इस इवेंट को बिल्कुल मिस मत करिएगा, दिस इज वन ऑफ अ काइंड जो जरूर जरूर जरूर जाके आपको अटेंड करना चाहिए। I'll be right back, एक ब्रेक के बाद, stay connected.

0: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन जैमिंग? जिस भजन जैमिंग मूवमेंट ने हजारों को एक साथ गाने पे मजबूर कर दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैक स्टेज सिबलिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, और जब पूरा हॉल एक साथ गाएगा वो बनेगा द रियल बैक स्टेज सिबलिंग्स एक्सपीरियंस। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। Not your usual sit and watch show. Sing along, clap along, jam along. Bhajan jamming with backstage siblings. Tickets on Sistic. Book now.
1: It's a must-be partner event.

0: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: और बस मंडे का ये नया मस्ती हैंग आउट, मतलब ये जो अभी हमने आज नया शो मस्ती हैंग आउट शुरू किया था उसको रैप अप करने का वक्त हो चुका है। आज का शो थोड़ा मतलब मंडे जैसे खुद होता है वैसे था, थोड़ा रेजिस्टेंस, पर धीरे धीरे हम रिदम में आए एंड सिंगापुर के यूजफुल अपडेट्स हमको मिले, बॉलीवुड का मसाला, सम अमेजिंग क्वर्की स्टोरीज, है ना। एंड देन उसके बाद आपके पूरे आने वाले जो हफ्ते हैं 2-4 उसको मैंने ऐसा प्लान कर दिया है कि आप अपना कैलेंडर बना लो तो आपको कि वाह यार मुग्धा तू मेरी पर्सनल कैलेंडर मेकर बन जाओ, वाह दैट्स अ गुड प्रोफेशन, ऐसा बन सकते हैं। मैं तो वैसे भी एक्सपर्ट हूँ कैलेंडर पे डेट्स मार्क करने में। यस देखो हमने एक्चुअली फ्यूचर ट्रैवल प्लान से लेकर के फेस्टिव प्लान सब तो बना लिया और मैंने आपको सब बता दिया, तो मुझे एज अ प्रोफेशन को स्टार्ट करने में ज्यादा मुश्किल होगी नहीं। मंडे के शो का फ्लेवर मुझे इसीलिए आज बहुत अच्छा लगा, पूजा, फेस्टिविटीज, म्यूजिक, एवरीथिंग वॉज देयर। ना तो ओवर मोटिवेटेड, ना कोई हैवी ज्ञान, बस हफ्ता स्टार्ट करो, थोड़ा हंसो, थोड़ा सुनो, थोड़ा जानो पहचानो और अपने पेस पे चलो और फिर इसको चलने दो। अगर आप कम्यूट से घर पहुंच रहे हो, डिनर का प्लान चल रहा है, दिमाग में कुछ है या अभी भी लैपटॉप के सामने बैठे, तो होपफुली आज का मस्ती हैंग आउट आपके मूड को थोड़ा बेटर बनाकर जा रहा है यहाँ से। अगर हाँ, गिव मी अ थम्स अप ऑन हमारे पर्सनल नंबर पे, फेसबुक पे भी पोस्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज मी मुग्धा, आप मुझे सुन रहे थे मस्ती हैंग आउट पे ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। अब आगे का वीक आपका है, मंडे के लिए फिलहाल इतना ही, थोड़ा क्रेडिट मुझे दे देना, मैंने इतना तो सॉर्ट आउट कर दिया है। तो टेक केयर सिंगापुर, हैव अ वेरी गुड इवनिंग और मिलते रहेंगे फिर तब तक जब तक कि अगला शो नहीं आ जाता। बाय बाय, टेक केयर।

0: नचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें,
3: आई लव यू रसना,
2: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 AM onwards, only on Radio Mercy 24/7 Live.
4: 1, 2, 3, 4. Do take an hour off the world. Let unplugged melodies soothe your soul and spark your imagination. Musty Unplugged, the indie hour of pure musical bliss.
5: Only on Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इन

0: Frosty Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back. Saturday night ka plan? Party? Concert? Ya phir bhajan jamming? जिस भजन जैमिंग मूवमेंट ने हजारों को एक साथ गाने पे मजबूर कर दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। Epic Encounters and Eva Events present Bhajan Jamming with backstage siblings Raghav and Prachi. गाएंगे वो, गाएंगे आप, और जब पूरा हॉल एक साथ गाएगा वो बनेगा द रियल बैकस्टेज सिब्लिंग्स एक्सपीरियंस। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। नॉट योर यूजुअल सिट एंड वॉच शो, सिंग अलोंग, क्लैप अलोंग, जैम अलोंग। Bhajan Jamming with Backstage Siblings. Tickets on Sistic. Book now.
1: The Radio Masti Partner Event.
2: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
3: Life थोड़ी boring लग रही है। Tension नहीं लेने का। Time for your therapy session. Masti ka Mantra with RJ Antara. जहाँ न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्र लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
4: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
0: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजे आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: नोए, तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है।
1: Welcome to your chill zone. Musty Music Cafe. Only music, only musty.

की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 Live Fan. Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats

0: पहुंचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: कल ना कुछ नहीं, सब गरम ही गरम है, अंगार है।

0: से मिलाए हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान को, हाँ जी हिंदुस्तान को, असली हिप हॉप से मिलाए हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान को, हाँ जी हिंदुस्तान को, असली हिप हॉप से मिलाए हिंदुस्तान को, क्या
1: अर्जुन आएंगे
2: न, करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे
3: सम शोज डोंट जस्ट प्ले, दे स्टे विद यू, एंड व्हेन आवर लिसनर्स आस्क फॉर मोर वी ब्रिंग देम बैक। Encore shows by popular demand. Relive the music, the moments, the magic. Only on Radio Masti 24/7. Check the app menu for Encore show timings.
4: Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.
2: और कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे?
5: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।

0: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style, anywhere, anytime.
1: दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

0: साहब सत श्री अकाल
1: गेम जय सिंगापुर सारू जय
2: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी
0: कृषि वल नट्स, ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com।
2: GGMart, योर पर्सनल ग्रोसर। कुछ पुरानी धुनें, कुछ भूली बिसरी यादें,
3: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान,
2: कोई आवाज, कोई साज, सिनेमा की दुनिया के किस्से, रुलाते हंसाते उदासी भरे खिलखिलाते किस्से, समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से।
4: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
5: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
1: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें या ना दें, हमारी गाड़ी तो इसी प्लेटफॉर्म पे आएगी।

0: नाचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए ड्यूटी पर।
0: Non-stop music, non-stop musty, only on Musty Music Cafe.
2: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore. Check it out.

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे।
2: गाना चाहिए, आप बोलो हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
3: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
4: 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20, 10।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा। मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार।
5: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
1: Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.

0: सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: नाचने का मन है,
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ, भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
4: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
5: न करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

0: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
1: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
2: योर मस्ती

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: हाँ हाँ तुम ही डीजे तुम ही हो मस्ती वॉइस आपकी चॉइस उसे वी प्ले बड़े बड़े हिट सुनो
1: हेलो हेलो नमस्ते चले 9 से 12 चले बताओ आप जैसा कहो मैं तो आज सुबह से यही कह रही हूँ हाँ हाँ बिल्कुल क्या बात कर दी आप जैसा कहो वही कर लेते हैं वैसे ही कर लेते हैं हेलो हाय नमस्ते गुड इवनिंग 5 बजकर हो चुके हैं यहाँ पर 6 मिनट यस यहाँ पर शुरू हो चुका है मस्ती वॉइस आपकी चॉइस मैं अंशरा आपके साथ जो है यहाँ पे बिल्कुल जुड़ चुकी हूँ शाम वाला वक्त है मंडे वाला दिन है बड़े तड़के तड़के ब्लूज आते हैं यहाँ पे अलग अलग तरह के ब्लूज थपेड़े मारते हुए हमें दिन के इस पार से उस पार पहुंचा के लेकर जाते हैं एंड समहाउ इट हैज बीन लाइक दैट ओके ऐसी ऐसी चीजें और ऐसी ऐसी जगहों से आ रही है कि मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ओ अच्छा कुछ ज्यादा जल्दी ही मंडे आ गया है फ्राइडे कब आएगा या इट्स वेरी रेयर जब मैं ऐसा सोचूं कि यू नो मंडे आ गया है तो फ्राइडे के बारे में ऑलरेडी सोचना शुरू कर दूं बट या टुडे इज वन ऑफ दोज डेज कि अगर टेलीपोर्ट करके इसको ऐसे ही स्विच करके सीधा फ्राइडे पहुंच जाए तो कैसा रहेगा लेकिन यू नो हमारी हसरतों का क्या है हमारी हसरतें तो यूं ही आगे बढ़ती रहती है और यूं ही आगे चलती रहती है इनका कुछ नहीं होने वाला है विशफुल थिंकिंग को साइड में रखते हुए आपकी चॉइस की बात करते हैं क्योंकि शो का नाम है मस्ती वॉइस आपकी चॉइस तो आप बताएं मुझे कि आज इस मंडे को आपको क्या सुनने का मूड है आपका खुद का मूड कैसा है या 9158963 ये है वो नंबर जहां पर आपने मेरे को बता देना है कि कहां जो है क्या सुनना है आपको वो करोगे उसके अलावा मेरे पास खबरें हैं देयर सो मच टू टेल देयर सो मच हैपनिंग इन सिंगापुर देयर आर कॉन्टेस्ट विच आर आल्सो रनिंग सो या वी आर क्वाइट पैक्ड दिस इवनिंग चलिए भाई फिलहाल चलते हैं आगे और जब तक आप अपने गाने नहीं बताते मेरी पसंद के गाने सुन लो वो भी काफी अच्छे होते हैं बाय द वे रेडियो मस्ती 24/7 कमिंग अप नेक्स्ट सनम तेरी कसम से दिस वन

0: This Ganesh Chaturthi, bring home a bappa you simply can't take your eyes off. Vibrant colors, gorgeous ornaments, beautiful poses, mesmerizing detailing, eco-friendly and more. Har Ganpati idol apne aap mein khas. Welcome bappa for Ganesh Chaturthi or choose one to be a beautiful part of your home forever. See the magnificent collection at Jyoti Stores Ganpati Showroom, 21 Cuff Road. Come for the variety, leave with your bappa. Ganpati bappa!
1: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 September, 7 p.m. onwards, CSC Auditorium, Tissenson Road. Tickets $60 onwards. Contact and pay now, 81382790. Ishq Sufiana, mera. Ishq Sufiana by Amit Dhamelia.
2: It's a Masti Partner event.
3: बजते ही नाचना जरूरी है। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, यू से वी प्ले।
4: जी हाँ, आपके चॉइस के गाने यहाँ पर आज प्ले होते हैं क्योंकि मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, हमारा फेवरेट और आप सभी का फेवरेट वाला रिक्वेस्ट शो। वेल, मैं अंतरा आपके साथ यहाँ पर 5:00 हो चुके हैं 21 मिनट। भाई ऐसा थोड़ी ना है कि किसी ने एक मूवी बना दी, उसकी मूवी हो गई हिट, अब सारे के सारे उसी को कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते हुए उसको आगे लेते हुए जाएंगे एंड एवरीबडी विल बी लाइक वाह वाह क्या मूवी बनाई। अरे भाई ऐसा कैसे चलेगा। सो वेल भाई, हाल ही में रिलीज हुई एक मूवी टॉक्सिक, ठीक है, यश की टॉक्सिक, ऑलराइट, एंड अपेरेंटली इट आल्सो हैड, सो काफी कंट्रोवर्सी में भी रही बिकॉज इट आल्सो हैड सीन्स, अ लॉट ऑफ सीन्स जो कि कियारा अडवाणी के साथ और जो है दूसरी एक्ट्रेस जो उसमें थी उनके साथ काफी अलग अलग इस तरह के, जैसे एनिमल में दिखाया गया था ना रणबीर कपूर का कैरेक्टर एंड किस तरह से जो है उनकी केमिस्ट्री जो है लीडिंग लेडीज के साथ रहती है एंड यू नो हाउ नेगेटिव इज दैट, उसको लेकर भी काफी चर्चा हुई थी। सो द सेम वे जो है यश के और कियारा अडवाणी के उन सीन्स को लेकर काफी बात हुई थी कि यार इतना मार पीट और इतना अग्रेशन दिखाने का क्या इस मतलब बनता है। सो वेल, अब टॉक्सिक मूवी तो हो गई थोड़ी सी फेल। या सो यश जो है अपेरेंटली इफ रिपोर्ट्स आर टू बी बिलीव ही हैज गिवन अ 100 crore का फी फॉर द नेक्स्ट विच ही इज गोइंग टू डू रामायणा जो जिसके लिए कर रहे हैं एंड ही टेक्स आउट डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स इंस्टेड। तो भाई उन्होंने एक अलग ही कॉम्पनसेशन का मॉडल निकाला अपनी अगली मूवी के लिए एंड कहा कि ठीक है चलो मैं अपनी एक्टिंग फीस जो है वो रहने देता हूँ एंड आई विल इंस्टेड टेक द साउथ इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स फॉर बोथ द पार्ट्स ऑफ दिस एपिक फ्रेंचाइजी। नाउ यश हु इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट एज अ को प्रोड्यूसर, रामायणा की मैं बात कर रही हूँ, इज रिपोर्टेडली बेटिंग ऑन द फिल्म्स बॉक्स ऑफिस का परफॉर्मेंस रादर दैन टेकिंग एक फिक्स्ड रेम्यूनरेशन। So, अगर रामायणा परफॉर्म स्ट्रॉन्गली अक्रॉस साउथ ऑफ इंडिया, हमारे यश जो है कुड पोटेंशियली अर्न मोर देन 100 crore का फी ही वॉज एक्सपेक्टेड टू रिसीव। सो वेल, ये जो डिसीजन है कम्स आफ्टर इनकी अंडर परफॉर्मेंस इन टॉक्सिक के बाद एंड अब जो है इतना ही देख सकते हैं, इतना ही कह सकते हैं कि होपफुली दैट व्हाट ही इज थिंकिंग और जिस तरह की इन्वेस्टमेंट उन्होंने और जिस तरह की स्ट्रैटेजी लगाई है इस बार उन्होंने वो उनके काम आ जाए। मैं कह रही हूँ कंट्रोल से कंट्रोल भी करते हुए एक ही चीज बार बार नहीं चल सकती, वैसे भी आजकल कुछ भी चलना बहुत मुश्किल हो गया है दोस्त, आपको नहीं लगता? मुझे तो बहुत ही ज्यादा लगता है। फिलहाल के लिए तो यहां से बढ़ते हैं आगे, कमिंग अप नेक्स्ट इज कह रहे हम नहीं सुधरेंगे, वैसे ये तो फिल्म इंडस्ट्री में भी काफी लोग कह रहे हैं कि हम नहीं सुधरेंगे, बट वेल उसके बाद आ रहा है अमित आपकी रिक्वेस्ट। आज अमित आपने रेट्रो गाना जो है वो रिक्वेस्ट कर दिया, सपना आंटी की भी यहाँ पर रिक्वेस्ट आ चुकी है, सो लेट मी गो एंड फाइंड दैट एज वेल।

0: बाजू
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: हाँ जी, हाँ जी, आइए 5:34 हो चुका है स्टूडियो क्लॉक में, आपको बताया जाए कि इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट क्या कहता है। आपको मिलेगा हैवी ट्रैफिक ऑन BKE टुवर्ड्स वुडलैंड्स एट वुडलैंड्स रोड एग्जिट। व्हीकल ब्रेकडाउन की खबर आई है ऑन क्लेमेंटी रोड टुवर्ड्स बुकेतमा आफ्टर AYE, अवॉइड करें लेन नंबर 3। और मिलेगा हैवी ट्रैफिक ऑन PIE टुवर्ड्स ट्वास एट CTESLE एग्जिट। सो वेल, ये था इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट, बट उसी के साथ साथ एक और अपडेट है जहां पे आपका दिल जो है बिल्कुल कहेगा गणपति बप्पा मोरिया, कैसे अभी बताती हूं।
3: यू आर ट्यून्ड इनटू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, कीपिंग यू कनेक्टेड एनीवेयर एनी टाइम द देसी वे।
2: That's right, रेडियो मस्ती 24/7। जी हाँ, सिंगापुर में कोई कुछ करे, कुछ ऐसा हो और हम यहाँ पर आपको नहीं बताए, ऐसा कभी हुआ नहीं है और ना कभी होगा। तो तैयार हो जाइए सिंगापुर कहने के लिए गणपति बप्पा मोरिया, क्योंकि सिंगापुर में गणेशोत्सव की तैयारियां बिल्कुल शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर की मैं बात कर रही हूँ, उनके साथ बप्पा का स्वागत होने वाला है फुल ऑन धूमधाम से। सो 14 से 18 सितंबर फेरर पार्क जो हॉलीडे इनके जस्ट बगल में है, 2 Owen Road के ओपन फील्ड में 5 दिन बप्पा की भक्ति सेलिब्रेशंस एंड कम्युनिटी के नाम आप बिल्कुल कर सकते हैं। 14 सितंबर को गणेश का जो है, गणेश जी की स्थापना के साथ साथ शुभारंभ, हर दिन मॉर्निंग और इवनिंग प्रेयर्स और रोज शाम 7 बजे कल्चरल परफॉर्मेंसेस होने वाली हैं। एंड सेलिब्रेशंस में वो महाराष्ट्रियन तड़का यानी कि ढोल ताशा, आई लव ढोल ताशा, इट ब्रिंग्स सच अ बप्पा एनर्जी टू द होल थिंग आई टेल यू। देन काफी सारी चीजें जो है करते हुए 18 सितंबर को जो है बप्पा की विदाई भी हो जाएगी। तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ दिस इज द मोमेंट व्हेन यू कैन गो, बप्पा के दर्शन कीजिए, सेलिब्रेशंस का हिस्सा बनिए और सिंगापुर में महसूस कीजिए गणेशोत्सव की वो अपनी सी रौनक। सो वेल, रिमेंबर 14 to 18 सितंबर महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर का गणेशोत्सव 2026। एंड यस, प्राउड टू से दैट बप्पा के इस आगमन की तैयारी में मस्ती मीडिया नेटवर्क जो है, हम है इनके डिजिटल मीडिया पार्टनर्स, भूलिएगा मत।
4: सिंगापुर, क्योंकि इस बार मोरिया की गूंज फेरर पार्क में होगी। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर प्रेजेंट्स गणेशोत्सव 2026।
5: आया देखो आया बप्पा मोरिया।
4: हर सुबह और शाम आरती, कल्चरल परफॉर्मेंसेस, अथर्वशीर्ष पठन और जब बजेंगे ढोल ताशा। 14 to 18 सितंबर, ओपन फील्ड बिसाइड हॉलिडे इन 2 Owen Road, फेरर पार्क। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर का गणेशोत्सव 2026।

0: हिट्स आपकी प्लेलिस्ट और हमारा थोड़ा सा मिर्च मसाला मस्ती बॉयस आपकी चॉइस यू से वी प्ले।
1: आइए आइए वापस स्वागत है आपका रेडियो मस्ती 24/7 पर। मैं आंत्रा यहाँ पर आपके साथ एंड 5:44 हो चुके हैं यहाँ पर स्टूडियो क्लॉक पे। मैंने कहा ना कि बहुत सारा कुछ है जो चल रहा है राइट हियर एंड इतना सारा कुछ बताने के लिए, बट उसके साथ साथ खबरें भी देना इतनी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है भाई। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने रणवीर सिंह का वो देखा कि भाई शूटिंग के सेट्स से फाइनली उनकी धीरे धीरे झलकियां जो है वो आ रही है। आई डोंट नो वेदर यू नो और नॉट, बट आई एम श्योर दैट मैंने अपने शो पे आपको बताया होगा दैट एक ज़ॉम्बी जो है जॉनरा एक्सप्लोर करने वाले हैं हमारे रणवीर सिंह। एंड इट वाज जस्ट नॉट एनी न्यूज़ बिकॉज़ एक्चुअली में इसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है एंड शूटिंग के बिहाइंड द सीन्स के कुछ पिक्चर्स जो है वो एज यूजुअल ऑफ कोर्स पपराजी हमारी बाहर लगी हुई है काम करने में। उनको इसी बात के लिए जो है पूरा किया जाता है कि जहां जहां घुस पाओ, जहां जहां से जो मिल जाए वो ले आओ बालक। सो वेल ऑफ कोर्स ओरले करके जो है ये मूवी का नाम एंड रणवीर सिंह हैज ऑलरेडी स्टार्टेड शूटिंग फॉर दिस, सो क्वाइट एंड प्रीटी मच एक्साइटेड। इसमें ना वो एक छोटे से बच्चे को कंधे पे ले जाते हुए कुछ बिल्कुल नजर आ रहे हैं एंड काफी सारा ब्लैक स्क्रीन, ग्रीन स्क्रीन, ब्लू स्क्रीन, ये सारी चीजें भी नजर आ रही है पीछे, व्हिच मींस इट इज एंड ऑफ कोर्स ज़ॉम्बी थ्रिलर है तो वीएफएक्स और सीजीआई इन सब चीजों का तो इस्तेमाल होगा ही होगा। बट वेल आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड। ये मेरी शायद हमारे इंडियन सिनेमा की पहली ज़ॉम्बी जो है मूवी होगी जो शायद आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं देख पाऊ। मुझे थोड़ा सा खून खराबी से वो लगता है, बट अगर मैंने धुरंधर मेरे को दिखा दी रणवीर ने तो शायद ये भी मैं देख ही लूंगी किसी ना किसी तरह। बट देयर इज वन थिंग जो व्हिच आई विल नॉट मिस फॉर एनीथिंग एल्स भाई, जिसके ऑलरेडी फर्स्ट टू एडिशंस ऐसे सोल्ड आउट हो रखे हो और जब बात आती हो अमित धमेलिया जी की भाई हम तो कहेंगे हम तो ऑलरेडी वहां पे होंगे। आप बताओ आपका क्या सीन है? यस आई एम टॉकिंग अबाउट इश्क सूफियाना एंड यू मस्ट हैव हर्ड मी, वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट इसके पहले वाले जो एडिशंस थे इट हैड बीन सोल्ड आउट एंड सच अमेजिंग म्यूजिक। मतलब ना ही सिर्फ सूफी गाने जो है एक लाइव उसके साथ एक जो एक फोक का ब्लेंड आता है और अमित धमेलिया जी और उनकी टीम जो है दे आर जस्ट क्वाइट फैंटास्टिक। यस दे आर कमिंग अप विद द थर्ड एडिशन काफी सारे सरप्राइजेस के साथ, काफी ब्राइट एंड वाइब्रेंट कलर के साथ इस बार वो कह रहे हैं कि हम वापस आ रहे हैं। सो वेल सोलफुल आवाजें, सूफी flavors, live gana and it is going to be one evening to remember. So if you want to attend and chahte hain ki aap ishq sufiyana yani ki param swaram performing arts jo laate hain amit dhamelia ji ka ye show aap attend karna chahte hain to 26th of september ko ye ho raha hai saturday ko sham ko 7 baje se ekdam hall banaya jayega auditorium civil service club at tessenson pe. Jo tickets hai wo aap bilkul khareed sakte hain, you have to pay now to 8138279 0. And yes, if you want to win tickets from us, uske liye jude rahiye hamare saath, stay tuned to Radio Masti 24/7.

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
2: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
2: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
3: जीजी
2: कृषि वाल नट्स ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com।
3: GGMart, योर पर्सनल ग्रोसर।
4: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन जैमिंग। जिस भजन जैमिंग मूवमेंट ने हजारों को एक साथ गाने पे मजबूर कर दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैक स्टेज सिबलिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, और जब पूरा हॉल एक साथ गाएगा वो बनेगा द रियल बैक स्टेज सिबलिंग्स एक्सपीरियंस। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। Not your usual sit and watch show. Sing along, clap along, jam along. Bhajan jamming with backstage siblings. Tickets on Sistic. Book now.
5: It's a Masti partner event.
6: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique, showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.

ओ तैयब टेल मी हाउ हाउ, तैयब टेल मी हाउ हाउ, ओ लड़की तेरी ताजमहल सी हम करे वाओ वाओ।

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: हाँ, तुम ही डीजे, तुम ही हो। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, यू से वी प्ले बड़े बड़े हिट्स सुनो।
1: पहुंच चुके हैं 6 बजे के इस बार रेडियो मस्ती 24/7। मैं अंतरा यहाँ पर आपके साथ बिल्कुल बनी हुई हूँ और चल रहा है मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, यानी कि हमारा रिक्वेस्ट शो। धीरे धीरे करते हुए यहाँ पर रिक्वेस्ट एंड अलोंग विद टाइम जो है वो मुझे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। सबके रिक्वेस्ट प्ले होंगे, दैट इज फॉर श्योर। बट उसी के साथ साथ क्या कहाँ चल रहा है एंड द अलग अलग तरीके की खबरें जो है जो मेरे सामने आ रही है एंड सम मेक्स मी वेरी वेरी क्यूरियस लाइक दिस वन। तो क्या है कि आज कल जो है वीडियोस बनाने के अलग अलग तरीके जो है लोगों के पास, देखो फोन्स तो है ही है, लेकिन आपने वो चीज देखी है दिस सक्शन के जैसे होता है, एक स्ट्रिप आती है जो आप अपने फोन के पीछे लगा सकते हो। सो बेसिकली व्हाट दैट डज इज दैट अगर आप कोई भी मेटालिक सरफेस आपके आसपास हो, आप जाके उसको, या फिर शीशा हो, उस पर अपना फोन यू ही उस के जरिए जो है बिल्कुल चिपका सकते हो और आपका फोन गिरेगा भी नहीं एंड यू कैन गेट योर एंगल। सो यू डोंट हैव टू कैरी अलग से जो है स्टिक या कुछ सेल्फी स्टिक, इस टाइप की चीजें कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नाउ व्हाट दिस गाय डिड वाज इंडिया के मेट्रो ऊपर, ठीक है, सामने से मेट्रो जाने वाली है, उसका जो है दरवाजा खुलता है, उसके एक बड़े से शीशे पे ये जो बंदा है वो अपना फोन ऐसे स्टिक कर देता है उस सक्शन के थ्रू, पैड के थ्रू। अब बेसिकली उसको कैप्चर करना है कि अलग अलग जगह से जो है लोग आ जा रहे हैं तो दूसरे दूसरे स्टेशन में, द फोन गोज अवे विद द ट्रेन and later then he posts all those you know things which were eventually jo hai recorded by the phone. The mystery is that bhai tumhe apna phone wapas mila kaise? Like I was so curious ki ye kaise ho gaya, matlab India mein tumne apna phone chipka ke bheja aur tumko wapas mil bhi gaya aise, matlab how? But well, people are doing a lot of things like this. So well, ये तो हो गई इनकी बात। I am curious about it, but I don't know how they did it. But definitely, इन्होंने कुछ किसी तरह से तो किया ही होगा। I was curious about कि हमारी dear श्रेया आज क्या गाना request करेगी, तो उन्होंने मेरी curiosity बिल्कुल खत्म कर दी है। त्रिदेव movie का ये वाला गाना जो है श्रेया के request अब मैं यहाँ पर play करने वाली हूँ और मेरी curiosity और भी ज्यादा बढ़ गई है जब से मैंने इनके बारे में सुना है। कौन है ये? Let me come back and tell about them as well. लेकिन फिलहाल के लिए आपकी choice on Radio Masti 24/7.

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart योर पर्सनल ग्रोसर।
3: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन जैमिंग। जिस भजन जैमिंग मूवमेंट ने हजारों को एक साथ गाने पे मजबूर कर दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिबलिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, और जब पूरा हॉल एक साथ गाएगा वो बनेगा द रियल बैकस्टेज सिबलिंग्स एक्सपीरियंस। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। Not your usual sit and watch show. Sing along, clap along, jam along. Bhajan jamming with backstage siblings. Tickets on Sistic. Book now.
2: It's a Masti Partner event.
4: क्या ही वो समा होगा जब स्टेज होगा, बट स्टेज आप और राघव प्राची मिलकर ही बनाएंगे। कौन, क्या, कब, कैसे, और अगर बैकस्टेज सिबलिंग्स जो है इंडिया में धूम मचाने के बाद सिंगापुर में लाइव करने आ रहे हैं अपना शो, तो फिर उसके टिकट्स कैसे मिलेंगे? अंतरा आंतरा बताएगी आपको ऑन रेडियो मस्ती 24/7, क्योंकि यही तो आज की आपकी चॉइस होनी चाहिए।
5: बजते ही नाचना जरूरी है। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, यू से वी प्ले।
4: 6:00 हो चुके हैं 18 मिनट बाय द स्टूडियो क्लॉक, रेडियो मस्ती 24/7 पर। मैं अंतरा आपके साथ यहाँ पर और बनाने आई हूँ आपके वन ऑफ द सैटरडेज को मोस्ट मैजिकल सैटरडे इवनिंग्स। सी, हर सैटरडे एक जैसा नहीं होना चाहिए। वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, एंड दिस पर्टिकुलर सैटरडे व्हिच आई वांट यू टू प्लान विद मी इज गोइंग टू बी अ लिटिल डिफरेंट। थोड़ा सोलफुल, थोड़ा म्यूजिकल, एंड समथिंग जो कि पूरी फैमिली एक साथ एंजॉय कर पाए। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द बैक स्टेज सिबलिंग्स, राघव और प्राची की मैं बात कर रही हूं। दे आर कमिंग टू सिंगापुर विद देयर मच लव्ड भजन जैमिंग का एक्सपीरियंस, और मुझे इसका कॉन्सेप्ट इतना इंटरेस्टिंग लगता है बिकॉज दिस इज नॉट वन ऑफ दोज कन्वेंशनल कॉन्सर्ट्स वी आर टॉकिंग अबाउट। यहां पर आर्टिस्ट स्टेज पे और ऑडियंस सिर्फ सामने नहीं, दे से दैट द स्टेज इज द ऑडियंस। मतलब गाएंगे वो, गाएंगे आप, जैसे कि मैं उसमें बोलती, गाएंगे वो, गाएंगे आप। सी, सोलफुल भजन तो होंगे ही, बट सूफी गाने एंड देन नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स। तो मतलब आप अपने फ्रेंड्स को भी ला सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स को साथ में ला सकते हैं, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी ला सकते हैं। इमेजिन कीजिए 3 जनरेशन एक रूम एक वाइब में झूम रहे हो, तो क्या ही खूबसूरत समा बंधने वाला है। एंड यस, इसी बात पर आते हैं कि टिकट्स जीतने वाली बात, तो मेरी बात ध्यान से जरा सुन लीजिए। सो बैकस्टेज सिबलिंग्स जो है सिंगापुर में, जो इनका शो है, किस डेट को हो रहा है, क्या आप मुझे बता सकते हो? ए 20th सितंबर, बी 26th सितंबर। तो सिंपली ए या बी साथ में लिख भेजिए बैकस्टेज सिबलिंग्स एंड सेंड अस योर आंसर, एंड क्या पता यू स्टैंड अ चांस टू विन द टिकट टू दिस शो। और अगर जस्ट इन केस अगर आपको लक का वेट नहीं करना है कि पता नहीं मेरा आएगा नंबर नहीं आएगा, तो बिल्कुल श्योर हो जाइए, सिस्टिक पे जाके जो है अपने टिकट्स बुक कर लीजिए। बैकस्टेज सिबलिंग्स राघव एंड प्राची, वेयर यू कैन सिट टुगेदर, सिंग टुगेदर एंड सेलिब्रेट टुगेदर। अब इससे ज्यादा डिटेल्स चाहिए, यू कैन गिव देम अ कॉल एट 9867144। All you have to tell me for winning the ticket is कौन सी डेट को बैकस्टेज सिबलिंग्स का जो है होने वाला है शो, ए 20th सितंबर या बी 26th सितंबर। वाह वाह, सुभान अल्लाह, इसी बात पे आने वाला है अगला गाना।

And coming up is a beautiful request from a daughter to her mother, remembering her mother. तो आज मुझे सपना आंटी ने कहा कि जो है मुझे अपनी मम्मी को याद करते हुए एक गाना रिक्वेस्ट करना है. एंड शी आस्क्ड फॉर माय सजेशन एज वेल, बट आई गेव हर कि मेरा तो ये वाला फेवरेट है, बट देन आई लव द सॉन्ग शी सिलेक्टेड फॉर रिमेम्बरिंग हर मॉम, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गाना अब मैं प्ले करने वाली हूँ उनके रिक्वेस्ट पर, इट काइंड ऑफ ब्रिंग्स अ स्माइल एंड आई वॉन्ट हर टू स्माइल व्हाइल शी रिमेम्बर्स हर मदर इस गाने के साथ. सो सपना आंटी, आपकी मम्मी को याद करते हुए और ये कहते हुए कि मेरी प्यारी प्यारी प्यारी मम्मी जो है वो वर्ल्ड की बेस्ट बेस्ट बेस्ट मम्मी है. हियर यू गो.

0: बाजू।
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: It's 6:31 by the studio clock. आइए आपको बताया जाए कि सिंगापुर की सड़कों का इस वक्त हाल चाल क्या हो रखा है। व्हीकल ब्रेक डाउन जो है वो हो रखा है NKPE टनल टुवर्ड्स TPE आफ्टर ECP, अवॉइड करें लेन नंबर 3। हैवी ट्रैफिक की खबर है NKPE टनल टुवर्ड्स TPE बिटवीन PIE एंड ECP, और मिलेगा हैवी ट्रैफिक ऑन CTE टुवर्ड्स SLE बिटवीन AMK एवेन्यू 5 एंड ब्रैडल रोड। वेल, ये था इस घंटे का ट्रैफिक का अपडेट, एंड उसी के साथ साथ तो चलिए अगले गाने की ओर यहाँ पर बढ़ चलते हैं। And let's come back and let me update you with something more healthy. What is that? आने दीजिए वापस, उसके बाद बताएंगे।
3: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style, anywhere, anytime.

0: This Ganesh Chaturthi, bring home a bappa you simply can't take your eyes off. Vibrant colors, gorgeous ornaments, beautiful poses, mesmerizing detailing, eco-friendly and more. Har Ganpati idol apne aap mein khas. Welcome bappa for Ganesh Chaturthi or choose one to be a beautiful part of your home forever. See the magnificent collection at Jyoti Stores Ganpati Showroom, 21 Cuff Road. Come for the variety, leave with your bappa. Ganpati bappa!
1: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रिनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 September, 7 p.m. onwards, CSC Auditorium, Tissenson Road. Tickets $60 onwards. Contact and pay now, 81382790. Ishq Sufiana, Ishq Sufiana by Amit Dhamelia.
2: It's a Masti Partner event.
3: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique. Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides, and lucky draws. All to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
4: Aapke hits, aapki playlist aur hamara thoda sa mirch masala. Musti voice, aapki choice. You say, we play.
5: Welcome back, Radio Musti 24/7. Now 6:37 ho chuke. Wow, kya grind hua 6:37 24/7. Main aapke saath Musti Voice, aapki choice. Bilkul yahan pe chal raha hai. Dheere dheere aapki choice ke gaane jo hai wo bhi yahan par play hote hue ja rahe hai. But main chahti hu ki aapki choices kaafi healthy rahe aur healthy choices ke liye at least main to I always turn towards the Crushable Nuts which I've got from GG Mart online. Ab kya hai ki isse pehle ki aap usko online order karne lag jao, which you will, once you try it, you will never go back to anything else. But well, मैं बोल रही हूँ GG Mart online का ये जो Crushable Nuts का range है, ठीक है, classic dry fruits का, इनका एक decade of experience है, बड़े trusted market leader रह चुके हैं, chemical free है, halal certified nuts है, it is just amazing. What you can do is you can go and try it. एक्चुअली में फिजिकली जाकर इनके कियोस्क में जो कि वेलोसिटी नवीना में लगाया गया है, सो कियोस्क नंबर 12 जो है वेलोसिटी नवीना पे आप बिल्कुल जा सकते हैं और हमारे जीजी मार्ट के Crushable Nuts की रेंज जो है वो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं. 11th टू 25th ऑफ सितंबर जो है ये कियोस्क नंबर 12 पे बिल्कुल आपको वहां पर मिलेंगे. द होलसम क्रच, द फेस्टिव सेविंग्स, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. एंड ट्रस्ट मी, वंस यू लीन ऑन टू Crushable के नट्स, यू विल नॉट गो फॉर any more nuts at all. So well, GG Mart online, ya to jaakar aap apne Crushable ke nuts order kar le ya fir aap kiosk number 12 par mid autumn sale par se jaakar khud ke jo hai Crushable nuts ke range ghar lekar aaye. Velocity at Novena Singapore, bhoolna bilkul nahi hai. Aur nahi, jinko hum bhool paaye hain isi baat ke saath saath, wo hai hamare ye dono actors yani ki Abhishek Bachchan and Rani Mukherjee. Bataiye kaun si last movie mein आपने इन दोनों को देखा था साथ साथ में काम करते हुए. Yeah, right. Rani Mukherjee was seen in Mardani 3 and Abhishek Bachchan अपने छोटे छोटे दूसरे projects वगैरह में नजर आए, लेकिन इन दोनों ने साथ में काम किया हुआ है. कौन मुझे बताएगा कि कौन सी मूवी में इन्होंने साथ में काम किया हुआ है? Well, जब तक आप मुझे ये बताते हैं तब तक मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि शाहरुख खान की मूवी जो आने वाली है किंग, इसमें ये दोनों आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम दे आर गोइंग टू be sharing the screen space.
6: साथ साथ में. आई डोंट नो किंग मूवी में और क्या क्या कुछ नहीं होने वाला है. इट्स जस्ट गेटिंग क्रेजियर डे बाय डे. बट वेल वी कैन ओनली वेट एंड वॉच, है ना. यहाँ पे एक चीज का वेट बिल्कुल नहीं करना है, दैट इज द गाना विच आई एम गोइंग टू प्ले फॉर यू. म्यूजिकल ब्रेक और उसके उस पार वापस से मैं आपके लिए हाजिर ऑन रेडियो मस्ती 24/7.

0: हाँ हाँ तुम ही डीजे तुम ही हो मस्ती वॉइस आपकी चॉइस यू से वी प्ले बड़े बड़े हिट्स सुनो।
1: कई बार ऐसा होता है ना कि कई कई ऐसी मूवीज होती है जो एकदम जुबान पे हमारे रहती है कि भाई ये तो वही है बट
0: याद नहीं आ रहा होता है और जल्दीबाजी के चक्कर में हम गलत नाम ले देते हैं। Well, कुछ ऐसा ही हुआ है यहाँ पर अमित के साथ रेडियो बस्ती 24/7 अंतराब के साथ यहाँ पर चल रहा है बस्ती वॉइस आपकी चॉइस। थोड़ी देर पहले मैंने एक सवाल छोटा सा ऐसे ही जस्ट फॉर फन सवाल पूछा था दैट अभिषेक बच्चन एंड रानी मुखर्जी जो है एक साथ एक मूवी में नजर आए थे तो वेल वो कौन सी मूवी थी एंड आई नो दैट यू नो मूवी का नाम एंड बड़े ही कॉन्फिडेंटली यहाँ पे जवाब आए कभी खुशी कभी गम। अरे कभी खुशी कभी गम एंड सडनली आफ्टर राइटिंग कभी खुशी कभी गम दिस पर्सन रियलाइजेस ओ नहीं उसमें तो शाहरुख खान तो इसमें भी था लेकिन ये वो वाला नहीं था। रानी मुखर्जी वैसे उसमें भी थी। दिस वॉज कभी अलविदा ना कहना दैट इज राइट। प्रीति जिंटा और शाहरुख खान होते हैं साथ में उसमें और अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी होते हैं साथ में एंड ये वही वाली करण जौहर वाली मूवी है एंड दैट वॉज द टाइम वेन दीज टू अमेजिंग एक्टर्स गॉट टूगेदर फॉर द फिल्म जो फिल्म जिसको बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बड़े ही चीजें सुननी पड़ी थी करण जौहर को बट मेरे हिसाब से करण जौहर की ये वाली फिल्म कभी अलविदा ना कहना वॉज वे ahead of its time. अब ऐसा तो है नहीं कि ऐसी चीजें और ऐसी बातें और वारदातें बिल्कुल नहीं होती है। जब से मैंने मस्ती मैडनेस करना शुरू किया है अब तो 10 साल हो गए हैं मुझे तो ऐसा लगता है कि इस दुनिया में ऐसा कुछ है ही नहीं जो पॉसिबल नहीं है। ऐसी ऐसी अतरंगी चीजें हमको पता चलती है। बाय द वे इफ यू हैव नो आइडिया एंड टुडे इज द फर्स्ट टाइम यू आर लिसनिंग ये कौन से शो के बारे में बात कर रही है दिस इज अमेजिंग खतरनाक शो विच मी एंड रेणुका वी डू इट फ्राइडे वाली सुबह को विच इज कॉल्ड मस्ती मैडनेस। ओ माई गॉड यू हैव टू लिसन टू इट टू बिलीव इट दैट वॉट ऑल हैपन्स ऑल अक्रॉस द ग्लोब एंड इट इज जस्ट कंप्लीटली इनसेन। ओके वेल एनीवेज सो ये बात कुछ ऐसी हो गई कि किंग मूवी जो आने वाली है तो उसमें नजर आने वाले हैं हमारे अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी अगेन टुगेदर आफ्टर आई थिंक 20 साल बाद। अब तो रिलीज कर ही दे यार किंग खान की ये मूवी किंग इतनी बातें कर चुके हैं अब ऐसा लग रहा है कि बाय द टाइम इट विल गेट रिलीज्ड हाइप इतना ज्यादा ओवर हो जाएगा कि शायद हमको लगे कि यार उस हिसाब से तो ये कुछ था ही नहीं। You know what I mean? अक्सर कभी कभी इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट कर दी जाती है कि उसके बाद जब सामने रिजल्ट आता है हमको लगता है कि बट वेल मैं अपना यहाँ पे काम कर दूं। यहाँ पे हमारे दविंदर पाजी जो है वो बड़े समय के पक्के हैं वो मुझे एकदम टाइम दे के रखते हैं कि ये इस टाइम से इस टाइम के बीच में अंतरा मेरा वाला गाना जो है वो प्ले कर देना वो मुझे पूरा पूरा गाना भेज देते हैं विच इज सो स्वीट ऑफ हिम सो इट जस्ट हेल्प्स मी टू फाइंड दैट सॉन्ग। दविंदर जी इफ यू आर ट्यून्ड इन ये रहा आपका गाना मैंने ढूंढ ही निकाला इट्स अ रेट्रो गाना एंड इफ यू वॉन्ट टू आपकी चॉइस का गाना मैं चाहते हैं कि यहाँ पे प्ले करूं तो 9151896 पर जैसे दविंदर पाजी ने बताया आप मुझे बता दो। गुड इवनिंग।

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
3: पहुंच चुके हैं 7 बजे उस पर रेडियो मस्ती 24/7 अंतराप के साथ। यहाँ पर मस्ती वॉइस आपकी चॉइस चल रहा है। ये वो गानों का मैजिक है जहां पर आप अपने फेवरेट गाने जो है मंडे की शाम को हमें बताते हैं और हम उसको मैजिकली आपके लिए बिल्कुल मैजिकली प्ले नहीं करते, लगा देते हैं सो दैट इट प्लेज एंड इट कास्ट्स दैट स्पेल ऑन यू व्हिच इज कॉल्ड क्या। चलो ठीक है, कोई बात नहीं यार, जैसा अभी सुबह से हेक्टिक दिन गया हो बट अभी ये मेरा फेवरेट गाना रेडियो मस्ती 24/7 पर सुनकर इस शो पर एकदम राहत की सांस सी आ गई। एंड इट इज लाइक दैट, म्यूजिक का मैजिक ही कुछ ऐसा है। अब कई बार ऐसा होता है कि जो है हमारा मेरा और आपका मूड जो है वो एकदम सिंक में होता है एंड जो गाना आप सोच रहे होते हो अचानक से मैं यहाँ पर प्ले कर देती हूँ एंड यू गो लाइक ओ माय गॉड अंतरा तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ये गाना जो है यहाँ पे अभी मैं सोच ही रही थी कि आई विल आस्क अंतरा टू प्ले दैट गाना एंड यू नो सी यू जस्ट प्लेड दैट एंड यू फाइंड इट सो अमेजिंग राइट। तो मैं तब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस ऐसे आ जाना चाहिए कि सुहानी शाह जैसे ये सारे चीजें कर लेती है शायद मेरे में भी वो शक्तियां हैं माँ, मेरे में भी वो शक्तियां हैं माँ बट नहीं वैसा कुछ नहीं है। आई थिंक हमारी हमारा प्यार म्यूजिक की तरफ कुछ ऐसा है कि कई बार वो एकदम ऐसा हो जाता है कि यूनिवर्स चाहती है कि हम दोनों एक ही चीज सोचे और एक ही गाना प्ले कर दे बट वट एवर आई थिंक सुहानी शाह डज दैट इज कंप्लीटली इनसेन एंड वेरी वेरी क्रेजी। कैसे कर रही थी यार, मतलब मेरी तो क्यूरियोसिटी ही वहीं पे अटकी हुई है एंड आई थिंक नॉट ओनली फॉर एज एडल्ट्स जो है ये सुहानी शाह जो इनका शो होने वाला है क्रेटा एयर थिएटर पीपल्स थिएटर में एंड स्पेल बाउंड नाम है इस शो का। इफ यू हैव नॉट सीन हर वीडियोस टिल नाउ तो आप हमारे पेज पे जा सकते हैं सोशल मीडिया एंड वहां पर जाकर यू कैन गो एंड चेक इट आउट। आई डोंट नो हाउ शी डज इट बट इट मेक्स मी वेरी वेरी क्यूरियस। ऑल्सो फॉर योर किड्स एंड ऑल, अगर आपके घर में बच्चे हैं यू मस्ट टेक दम टू शोज लाइक दिस टू शो दैम अमेजिंग। कैसे हम लोग बचपन में हमें हमारे पेरेंट्स जादू का शो दिखाने लेके जाते थे एंड वी यूज टू गो लाइक ओ माई गॉड देखा तुमने पता नहीं कैसे किया। दिस इज मच मच इवॉल्व्ड एंड वेरी वेरी स्मार्टर एंड अ वेरी वेरी जेंजी काइंड ऑफ अ वर्जन ऑफ इट एंड आई लव व्हाट शी डज एंड आई लव हाउ शी डज इट। आई लव हाउ शी प्रेजेंट्स हरसेल्फ एंड द होल एक्ट एज वेल। इट इज जस्ट कंप्लीटली एंड इसको ना लाइव देखने में ही मजा है, तभी वो एक्सपीरियंस आ पाएगा। सो देर आर टू वेज ऑफ डूइंग इट ओके। One way is that, of course, you can answer the question I'm going to ask and just take away the standard chance to win the tickets, okay? And the question is that

सुहानी शाह का जो ये जो स्पेल बाउंड लाइव इन सिंगापुर क्रेटा एयर पीपल्स थिएटर में जो होने वाला है, ये कौन सी डेट को होने वाला है? सो इफ यू सेंड मी दैट अलोंग विद, प्लीज उसमें लिख देना कि यू आर प्लेइंग फॉर सुहानी शाह शो टिकट्स. सो वेल या वो अगर आप मुझे बता दोगे तो फिर आपका रास्ता यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा. बट You, if you don't want to take chances, you just want to go about it, वो भी आप हमें बता दें. हम आपको सिस्टिक का वो लिंक भेज देंगे where it is, you can use हमारा promo code and you can get those discounted rates on those tickets as well. And you make sure that you, आपने जाना ही जाना है. I think that is also a very, very good रास्ता. ठीक है, ये हो गई ये आज की पूरी मुद्दे वाली बात. ठीक है, बहुत सारे कॉन्टेस्ट चल रहे हैं ना, तो उसके साथ साथ अगर लिख दोगे जवाब आंसर के साथ तो हमें भी पता चल जाएगा ये किस वाले के लिए आप जवाब दे रहे हो. फिलहाल यहाँ पे हमारे ब्रजेश जी जो है, ऑफ कोर्स उन्होंने मुझे एक गाना रिक्वेस्ट किया है और आज दिन ही आप लोगों का है. सो वेल, हियर यू गो ब्रजेश जी, आर यू रेडी? लेट्स गो.

0: हाँ, तुम ही डीजे, तुम ही हो। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, यू से वी प्ले। बड़े बड़े हिट्स सुनो।
1: 7:16 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में, रेडियो मस्ती 24/7 मस्ती वॉइस आपकी चॉइस चल रहा है। और आइए, कंगना दीदी ने लेटेस्ट में क्या किया है उसकी बात की जाए। कंगना दीदी सबका मन लगाए रखती है। अब मैं आई वॉन्ट टू कीप थिंग्स दैट वेज, ओके। कुछ ना कुछ बीच बीच में चलता रहता है एंड शी कीप्स ऑन कमिंग अप विद दीस थिंग्स। सो वेल, हुआ कुछ ऐसा कि हाल ही में जन्माष्टमी गई, आपको तो सबको पता ही है। तो कंगना रनौत जो है, उन्होंने पोस्ट किया एक वीडियो की, एंड वीडियो में वो अपने घर के किचन में, यानी कि अपने अपनी मम्मी के घर के जो है किचन में खड़ी हुई है, एंड वो गैस पे कढ़ाई है और कढ़ाई में भगवान जी के भोग का प्रसाद जो है वो बन रहा है। तो वो उसको ना कड़छी लेकर घुमाते हुए जा रही है, एंड वीडियो पे ऑफकोर्स द वीडियो बन रहा है, तो उस पर बात कर रही है कि मैं बड़े सालों के बाद जन्माष्टमी अपने घर पे मना रही हूँ, और साथ साथ में कड़छी हिलती हुई जा रही है। जैसे जब आपने कोई चीज चढ़ाए रखी होती है, उसको कांस्टेंट जो है, स्पेशली इफ यू आर मेकिंग भोग का प्रसाद या फिर मीठा कुछ बना रहे होते हो, तो कांस्टेंटली उसको हिलाते रहना पड़ता है। तो वो चीज, उनका हाथ भी चलता हुआ जा रहा है और बात भी करती हुई जा रही है कि इतने टाइम के बाद मैं ऐसे घर पे बना रही हूँ, ये भोग का प्रसाद है, एंड यू नो पूरे हिंदी में जैसे कि आजकल वो बात करती है, जिस तरह से पूरा ऐसा करते हुए कर, सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक था टिल द टाइम लोगों की इंक्लूडिंग मी नजर पड़ी कि वेरी नाइस, मतलब सूट पहना हुआ है, भोग का प्रसाद बन रहा है, जन्माष्टमी की विशेष जा रही है, एवरीथिंग, बट ये जो कढ़ाई पे चलता हुआ जा रहा है प्रसाद जो हिल रहा है, नीचे गैस ही ऑन नहीं था। एंड यू नो हाउ पीपल आर इसमें इंटरनेट पे, राइट? इतनी छोटी छोटी चीजें, एक तो सबके दिल में बसी हुई है कंगना रनौत, इतना अच्छा इंप्रेशन है इनका हर किसी के जहन में कि सबको लगता है कि ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चूक तो इनसे भी हो ही जाएगी, हो तो गई, गैस ऑन नहीं था, एंड ये नोट कर लिया गया। और उसके बाद जो मीम पे मीम कि भाई क्या हो गया, ये ऐसे कैसे, ये बिना गैस के कौन सा भोग का प्रसाद बन रहा है, एंड विद द शिद्दत एंड द पैशन शी इज लाइक, वो कड़छी लेकर हिलाए जा रही है पूरा प्रसाद, जैसे कि कहीं जल ना जाए, कहीं लग ना जाए, भाई कहां से चलेगा, नीचे गैस तो जल नहीं रही है। बट विदिन दिस मीम का होल सिलसिला हैपेंड, ओके, कंगना रनौत फिर कहाँ चुप रहने वाली हैं, उन्होंने वापस मुंह तोड़ जवाब दिया कि यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कुकिंग स्किल्स फ्रॉम पीपल हु आर अ बर्डन ऑन पेरेंट्स एंड प्लैनेट, तुम सिर्फ खाने पे ध्यान दो, डोंट वरी अबाउट माय कुकिंग। ओके, आई मीन ये तो वही बात हो गई ना कि चिट भी मेरी पट भी मेरी बिकॉज आई हैव सेड सो, या बट दैट्स दैट। हम एक तरह से ठीक ही है, यहाँ ना मन लगाए रखती है सबका, हमें भी बात करने को कुछ ना कुछ मिल जाता है, लेकिन बिना गैस के कैसे बन गया, क्यूरियस। बदली सी हवा है, गाना कमिंग अप नेक्स्ट ऑन रेडियो मस्ती 24/7। कैसे होगा, कैसे
2: करदा है, निया मेरिया गल्ला ते तू लड़दा।

0: सिंगापुर, क्योंकि इस बार मोरिया की गूंज फेरर पार्क में होगी। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर प्रेजेंट्स गणेश उत्सव 2026। आया देखो आया बप्पा मोरिया। हर सुबह और शाम आरती, कल्चरल परफॉर्मेंसेस, अथर्वशीर्ष पठन और जब बजेंगे ढोल ताशा। 14th to 18th September, ओपन फील्ड बिसाइड हॉलिडे इन टू ओवन रोड, फेरर पार्क। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर का गणेश उत्सव 2026।
1: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। रंग रेजा। दो यादगार एडिशन्स के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 September, 7 p.m. onwards, CSE Auditorium, Tissenson Road. Tickets $60 onwards. Contact and pay now, 81382790. Ishq Sufiana, mera. Ishq Sufiana by Amit Dhamelia.
2: It's a musty partner event.
3: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
4: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
3: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
4: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
5: जीजी
4: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
5: GG Mart, your personal grocer.

0: 11 बजते ही नाचना जरूरी है। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, यू से वी प्ले।
1: 7:29 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में, रेडियो मस्ती 24/7 मस्ती वॉइस आपकी चॉइस चल रहा है। और आपकी चॉइस कौन से वाले गणपति बप्पा है, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग राइट हियर राइट नाउ। मैं आपके अंतरा यहाँ पर आपके साथ भाई, एक कमाल का कॉन्टेस्ट जो है यहाँ पर चल रहा है, मुझे तो बड़ा मजा आता है भाई। आपको वो वाले जो है गेम्स याद है जहाँ पर कहा गया था कि तुमको सामान दिखा देते हैं बट यू हैव टू गेस द प्राइस एंड देन यू आर लाइक कितना हो सकता है, कितने का मिल सकता है, ये क्या होगा क्या नहीं होगा। सो वेल, ऐसा ही कुछ मौका आपको भी हम यहाँ पर देने वाले। देखिए, एक तो ये फेस्टिव सीजन, वी ऑल लव इट राइट। अभी जन्माष्टमी गई एंड नाउ वी आर ऑलरेडी इनटू, इनफैक्ट जन्माष्टमी से पहले ही हमारे जो गणपति बप्पा वाला वाइब है ना, वो बिल्कुल ही शुरू हो चुका था। एंड धीरे धीरे जैसे जैसे डेट्स और करीब आती जा रही है, आई थिंक वो वाइब और भी ज्यादा स्ट्रांग होता हुआ जा रहा है। यस, वी आर ऑल गियरिंग अप टू वेलकम बप्पा अपने अपने घर में। क्या आप अपने बप्पा जो है वो लेकर आ गए हो? और अगर नहीं भी लेकर आए हो, आई से फॉर लाइक जस्ट नॉट बिकॉज इट्स गणेश चतुर्थी और इस वक्त पे हम इको फ्रेंडली बप्पा जो है वो हम लेकर आते हैं, बट अदरवाइज एज वेल, इफ यू वॉन्ट टू जस्ट गेट बप्पा टू योर होम टू जस्ट कीप हिम फॉर एवर लाइक दैट, लेट मी टेल यू अ प्लेस। इफ यू गो ओवर देयर, आई थिंक इससे ज्यादा बड़ी रेंज और वैरायटी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट ज्योति गणपति, जो कि 21 कफ रोड पर इनका शोरूम है। यू हैव टू गो देयर एंड विटनेस दैट शोरूम एंड उसका जो वाइब है ओवर देयर। जब तक आप वहां पे जाओगे नहीं ना, आपको विश्वास नहीं होगा हम वहां पर जो एक्सपीरियंस करके आए हैं। मतलब 6 इंच से लेकर 48 इंचेस तक के जो है बप्पा के वैरायटी ऑफ साइजेस, वैरायटी ऑफ पोजेस ऑल्सो, एंड जिस अलग इंट्रिकेट लेवल का काम हो रखा है एक एक चीज पे, चाहे उनकी ज्वेलरी हो, चाहे उनके हाथ हो, चाहे उनकी जो ड्रेसेस हो, देयर वाज दिस ब्यूटीफुल वाइट कलर के पूरे ऊपर से नीचे तक उन्होंने पूरा ड्रेस पहना हुआ था। आई मीन दैट वाज वन काइंड ऑफ बप्पा हु वाज लुकिंग एब्सोल्युटली सरियल। देन देयर वाज अनदर बप्पा हु वाज वेयरिंग दिस अमेजिंगली ब्लू, लाइक रॉयल ब्लू एंड रेड एंड येलो का कॉम्बिनेशन के कपड़े, एंड ही वाज ह्यूज। आई थिंक इट वाज अ 42 इंच के बप्पा जो वहां पर 21 कफ रोड के उस शोरूम में रखे हुए थे। एंड ऐसा लग रहा था कि ओ माई गॉड, एंड इट्स सो, आई नो इट्स डिफिकल्ट जब आपके आसपास हर एक मूर्ति जो है ऐसा लग रहा है आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, बट देन देर इज दिस दैट वन मूर्ति हु विल ऑलवेज कम टू यू एंड यू विल बी लाइक दैट दिस इज माई बप्पा एंड आई वॉन्ट टू टेक दिस बप्पा होम। So well, you can go to 21 Cuff Road, experience this, and yes, definitely बप्पा को अपने घर जरूर लाए, है ना। और देखिए, हम तो ये भी कह रहे हैं कि आप अगर बप्पा लेकर आए, जैसे हमारे एक लिसनर है वो ऑलरेडी जो है वहां पे गए बप्पा को लेकर आए, उन्होंने रिसीट जो है उसकी फोटोग्राफ हमको भेज दी, एंड यस नाउ ही स्टैंड्स अ चांस टू विन अ पर्ल नेकलेस। बताओ, बप्पा और पर्ल नेकलेस साथ साथ घर पे है तो कितना क्या लकी नहीं हो जाएगा एकदम मामला। Absolutely right. But उसी के साथ साथ जो है आज हमने एक कमाल का कॉन्टेस्ट क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। If you have not seen, you have to go to our Facebook page या फिर Instagram page, मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर हमारा Facebook page है, मस्ती मीडिया 24/7 हमारा जो है Instagram का पेज है। आप वहां पर जाओगे तो आप देखोगे कि वहां पे हमने 6 इंच के एक बप्पा की फोटो जो है अपलोड कर रखी है। यू हैव टू गेस द प्राइस ऑफ 6 इंच के वो बप्पा जी की जो है हमारे मूर्ति का प्राइस जो है वो गेस करना है। या तो आप हमें वो फोटो देखकर भेजते, आपको क्या लगता है व्हाट इज द प्राइस ऑफ दैट 6 इंच का आइडल फ्रॉम ज्योति गणपति सिंगापुर, एंड या तो फिर उसी में कमेंट्स सेक्शन में आप बिल्कुल जवाब अपना दे सकते हैं। देखना है कौन कौन जो है सबसे करीब लाइक सबसे करेक्ट जो है जवाब दे पाएगा। यप, लेट्स से गणपति बापा मौर्य एंड लेट्स find out whether we get that pearl necklace or not this time around. Jyoti Stores and Flower Shop, they are just amazing. 21 Cuff Road, bhoolna mat, jaake zarur ek baar dekhna.
2: This Ganesh Chaturthi, bring home a bappa you simply can't take your eyes off. Vibrant colors, gorgeous ornaments, beautiful poses, mesmerizing detailing, eco-friendly and more. Har Ganpati idol apne aap mein khas. Welcome bappa for Ganesh Chaturthi or choose one to be a beautiful part of your home forever. see the magnificent collection at Jyoti Stores Ganpati Showroom, 21 Cuff Road. Come for the variety? Leave with your bappa.

0: बाजू।
1: ट्रैफिक अपडेट,
2: रात भी बाकी है, बात भी बाकी है और ट्रैफिक अपडेट इस घंटे का भी बाकी है। 7:45 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में। आइए आपको बताया जाए कि इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट क्या कहता है। एक एक्सीडेंट की खबर है ऑन BKE टुवर्ड्स PIE एट SLE एग्जिट। व्हीकल ब्रेकडाउन मिलेगा आपको ऑन PIE टुवर्ड्स टुवर्स आफ्टर KJE। और एक और एक्सीडेंट की खबर ऑन BKE, अगर आप जा रहे हैं टुवर्ड्स PIE आफ्टर SLE, अवॉइड करें लेन नंबर 3। सो वेल, ये था इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट। प्लीज ध्यान से गाड़ी चलाए। चार पहिया जो है व्हीकल में, अगर आप बैठे हो तो आगे बैठे हो, पीछे बैठे हो, डजंट मैटर, ऑलवेज वेयर सीट बेल्ट। दो पहिया व्हीकल में हो तो हेलमेट लगाना बहुत ही जरूरी है। और अगर पैदल जा रहे हैं और एयरपॉड्स और हेडफोन्स आपको लगाने की आदत है तो अपना एक कान हमेशा फ्री रखें, सो दैट यू आर अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स। वेरी वेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ ब्रह्मास्त्र मूवी से आ रहा है ये खूबसूरत एक रोमांटिक ट्रैक, मेरी पसंद ऑन मस्ती बॉयज, आपकी चॉइस।

0: Aamir Khan wondered.
1: Wow. Look, I could have thought of anything. That's amazing. Yeah.
0: Salman Khan wanted answers.
2: Kaise kiya ye?
0: R. Madhavan said.
3: Awesome.
2: You're very good, yaar. Very well done.
0: And Boman Irani?
4: I say this with great respect. This is actually blown my mind.
0: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
5: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhani.
0: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wow! Wonderful Escapades and Epic Encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer, People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
6: How do you know these things? Stop reading my mind.
0: This Ganesh Chaturthi, bring home a bappa you simply can't take your eyes off. Vibrant colors, gorgeous ornaments, beautiful poses, mesmerizing detailing, eco-friendly and more. Har Ganpati idol apne aap mein khas. Welcome bappa for Ganesh Chaturthi or choose one to be a beautiful part of your home forever. See the magnificent collection at Jyoti Stores Ganpati Showroom, 21 Cuff Road. Come for the variety, leave with your bappa.
7: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026, be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique, showcase your business to the community. Plus, live performances, kids activities, joy rides and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
8: आपकी प्लेलिस्ट और हमारा थोड़ा सा मिर्च मसाला मस्ती वॉइस आपकी चॉइस यू से वी प्ले.
9: By the way, अभी ये फेस्टिवल बाजार का ये एड चल रहा था तो मुझे याद आया कि आपको बता दूं कि काफी सारे स्टॉल्स जो है जिसकी बात हम फेस्टिवल बाजार में कर रहे हैं, दैट इफ यू हैव गॉट समथिंग टू डिस्प्ले, दैट दिस इज द परफेक्ट मौका फॉर यू टू हैव योर ओन स्टॉल एंड दैट टू एट सच अमेजिंग प्राइसेस. तो काफी सारे स्टॉल्स ऑलरेडी जा चुके हैं, वेरी वेरी लिमिटेड वंस आर लेफ्ट. आई थिंक $80 वाले जो स्टैंडर्ड टेबल है वो अभी थोड़े से ही बाकी है. सो इफ यू वॉन्ट टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, देन 8330-2518 Mountbatten CCIAEC Festive Bazaar 2026 की मैं बात कर रही हूँ. It is happening 27th of September. It's a Sunday and Mountbatten CC Multipurpose Hall में ये होगा सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक. So yeah, ये सारे मौके जो हम लाते रहते हैं, बताते रहते हैं, तो बिल्कुल हाथ से जाने नहीं देना चाहिए. There's a lot which happened today, right? हमने काफी सारी बातें भी कर ली, काफी सारा कुछ जो चल रहा है वो भी आपको यहाँ पर बता दिया, कॉन्टेस्ट जो चल रहे हैं वो आपको बता दिया कि पर्ल नेकलेस कैसे जीता जाए. यू हैव टू गो टू 21 कफ रोड, वहां जाकर आपको जो है गणपति आइडल देना है, रिसीट जो है उसका फोटो हमें भेज देना है एंड यू कैन स्टार्ट अ चांस टू विन अ पर्ल फोटो हमें भेज देना है एंड यू कैन स्टार्ट अ चांस टू विन अ पर्ल नेकलेस एज वेल. उसके साथ साथ सुहानी शाह का जो शो है उसके टिकट्स भी जीतने का मौका, कि कौन से डेट को जो है वो होने वाला है. देन वी प्लेड कॉन्टेस्ट फॉर द बैकस्टेज सिबलिंग, द वी प्लेड कॉन्टेस्ट फॉर इश्क सुफियाना. आई थिंक वी डिड अ लॉट, अगेन वी विल डू अगेन अ लॉट, बट अब कल सुबह मुलाकात होगी बिकॉज टुमारो इट्स गोइंग टू बी ट्यूसडे मॉर्निंग, यानी कि मस्ती का मंत्र होगा अंतरा के साथ. तब तक के लिए यू हैव अ फैंटास्टिक नाइट अहेड, होप यू हैड अ गुड टाइम. दिस वाज मस्ती वॉइस आपकी चॉइस. अंतरा कह रही है बाय, टाटा, गुड नाइट, कल मिलते हैं सुबह सुबह.

जब जब दर्द का बादल छाया, जब हम का साया लहराया, जब आंसू पल को तकाया, जब ये तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तो क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको बांटे हैं। थोड़ा गम है सबका किस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा। आग तेरी बेकार ही नम है, हर पल एक नया मौसम है। क्यों तू ऐसे पल खोता है, दिल आखिर तो क्यों रोता है।

0: नमस्कार आदाब एंड अ वेरी वार्म हेलो सिंगापुर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं समर और आप सुन रहे हैं सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो सिंस 2009 रेडियो मस्ती। और रेडियो मस्ती पर शुरू हो चुका है लेजेंड्स फिर से। तो आज मैं किसकी बात करने वाला हूं, चलिए मैं बताता हूं आपको। देखिए, ये वो हैं जो कॉमेडी के बादशाह डायरेक्टर नंबर वन है। हिंदी फिल्मों के ये पहले डायरेक्टर हैं जिन्हें डायरेक्टर नंबर वन कहा गया, क्योंकि इन्होंने ऐसी बहुत सारी फिल्में बनाई हैं जिसमें नंबर वन कहीं ना कहीं आता है, जैसे कि कुली नंबर वन, बेबी नंबर वन, हीरो नंबर वन और भी है। यानी हिंदी फिल्मों में अगर कॉमेडी फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर्स की एक लिस्ट बनाई जाए तो सबसे पहले जो नाम आता है वो है डेविड धवन। अब देखिए, हिंदी फिल्मों में अगर एक्शन में मनमोहन देसाई का नाम लिया जाता है और रोमांस में यश चोपड़ा का, तो कॉमेडी में एक नाम जरूर लिया जाता है, वो है डेविड धवन का।
1: लगता है किसी पागल कुत्ते को काट के आएगा। अच्छा। या तो इसका दामाद इसकी बेटी को छोड़कर चले गया है, या तो कहीं जाके वो मर गया है, इसीलिए ये बेचारा पागल हो गया।
2: नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, ये मेरा दामाद है।
1: तुम्हारा दामाद क्या इलाहाबाद के तालाब में?
3: क्या रे नंदू, सुना कल तूने मुखिया के कुत्ते को काट लिया था?
4: पहले कुत्ते ने मेरे को काटा था, इसलिए मैंने उसे काट लिया। झगड़े के अंदर मैं हिसाब बराबर रखता हूँ।
0: इनकी फिल्मों की न सिर्फ कॉमेडी बेहतर होती है बल्कि म्यूजिक भी उतना ही कमाल।

तो जनाब लगभग 60 फिल्में एडिट करने के बाद, 60 फिल्म्स एडिट करने के बाद डायरेक्शन में कदम रखने वाले डेविड ने एक से बढ़कर एक फिल्में बनाई हैं और जिन फिल्मों में कई एक्टर्स को इन्होंने सुपरस्टार का दर्जा भी दिलवा दिया। तो आज हम उन्हीं कॉमेडी की ब्लॉकबस्टर फिल्मों की बातें करेंगे और गाने भी सुनेंगे। सो स्टे कनेक्टेड एंड कीप एंजॉयिंग रेडियो मस्ती।

0: This Ganesh Chaturthi, bring home a bappa you simply can't take your eyes off. Vibrant colors, gorgeous ornaments, beautiful poses, mesmerizing detailing, eco-friendly and more. Har Ganpati idol apne aap mein khas. Welcome bappa for Ganesh Chaturthi or choose one to be a beautiful part of your home forever. See the magnificent collection at Jyoti Stores Ganpati Showroom, 21 Cuff Road. Come for the variety, leave with your bappa. Ganpati bappa! Saturday night ka plan? Party? Concert? Ya phir bhajan jamming? जिस भजन जैमिंग मूवमेंट ने हजारों को एक साथ गाने पे मजबूर कर दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिबलिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, और जब पूरा हॉल एक साथ गाएगा वो बनेगा द रियल बैकस्टेज सिबलिंग्स एक्सपीरियंस। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। नॉट योर यूजुअल सिट एंड वॉच शो, सिंग अलोंग, क्लैप अलोंग, जैम अलोंग। Bhajan jamming with backstage siblings. Tickets on Sistic. Book now.
1: It's a Masti Partner event.
2: Sunte rahiye Legends phir se Samar ke saath.
3: डायरेक्टर प्रोड्यूसर डेविड धवन स्पेशल शो आप सुन रहे हैं रेडियो मसी 24/7 लाइव पर, और मैं हूं समर आपके साथ लेजेंड्स फिर से में। देखिए जो आज के हमारे लेजेंड हैं डेविड धवन, ये पैदा हुए अगरतला में, त्रिपुरा में, अगरतला में। आप में से शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, अगरतला में पैदा हुए 16 अगस्त 1955 को, और इनका पालन पोषण जो हुआ वो सब कुछ कानपुर में हुआ। डेविड बेसिकली एक पंजाबी हिंदू फैमिली को बिलोंग करते हैं, लेकिन इन्होंने अपने बचपन के कुछ साल कैलकटा में भी बिताए हैं। उनके चाचा के कोई बच्चा नहीं था तो ये उनके पास रहते थे। अपने बचपन को डेविड कुछ यूं याद करते हैं।
4: I had great memories of that place. I was very small. I remember watching Jerry Lewis films, nice, you know, Chinese food. And my school also, मुझे एक चीज याद है, एक दिन मैं स्कूल से क्या हुआ, मैं निकल गया। I was very small, तो मैं वेट ही नहीं किया, मैं चलना शुरू हो गया, स्ट्रीट में चला गया। एंड देन मेरे एक अंकल का होटल था, मैं उधर पहुंच गया। देन बाय द टाइम द कॉप्स केम एंड दे फाउंड मी, मुझे बिठा के घर छोड़। आई रिमेम्बर दैट आल्सो।
3: डेविड धवन के पिताजी यूको बैंक में मैनेजर थे, और बचपन से ही डेविड को एक्टर बनने का शौक था। एक्चुअली इनका नाम डेविड धवन नहीं था शुरू में, इनका नाम था राजेंद्र धवन, लेकिन इनके पड़ोसी जो ज्यादातर क्रिश्चियन थे वो इन्हें प्यार से डेविड बुलाते थे, तो फिर इन्हें डेविड ही कहा जाने लगा। और जब इन्होंने एक्टिंग का कोर्स करने के लिए फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया तो अपना ऑफिशियली नाम भी डेविड धवन ही लिखवा लिया। वैसे फिल्म इंस्टीट्यूट इन्होंने ज्वाइन किया था एक्टिंग के लिए, लेकिन जब इन्होंने देखा कि वहां तो भैया सतीश शाह हैं, सुरेश ओबेरॉय जैसे दमदार एक्टर हैं, यहां तो अपनी दाल गलने वाली है नहीं, तो इन्होंने बाद में स्ट्रीम चेंज करवा ली और फिर एडिटिंग में एडमिशन करवा लिया। यहाँ इन्होंने एक बंगाली फिल्म देखी थी, मेघा ढाका तारा। ये देखने के बाद इनको लगा कि ये भी फिल्म में बनाएंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल ये एडिटिंग सीख रहे थे। 1976 में एडिटिंग में डिप्लोमा करने के बाद दूरदर्शन पर ये काफी सारे सीरियल्स एडिट करने लग गए। इसके बाद ये फिल्मों में एडिटर बन गए। करीब 60 फिल्में इन्होंने एडिट की। सबसे पहले इन्होंने साजन बिन सुहागन एडिट की थी, जो सावन कुमार जी ने बनाई थी। इसके बाद इन्होंने महेश भट्ट की फिल्म संजय दत्त, जिसमें स्टार थे संजय दत्त और कुमार गौरव, नाम एडिट की। जब डेविड संजय दत्त की एक और फिल्म एडिट कर रहे थे तो संजय दत्त ने इनसे कहा कि यार डेविड तू तो इतनी अच्छी फिल्म एडिट करता है, तो फिल्म डायरेक्ट क्यों नहीं करता। अब साहब डेविड धवन के मन में तो था कि एक डायरेक्टर बनना है, इधर संजय दत्त ने भी उन्हें कह दिया, तो उन्होंने अपनी पहली फिल्म की तैयारी शुरू कर दी। कौन सी थी ये फिल्म सिंगापुर, इसके बारे में हम बताएंगे, और फिर क्या हुआ इस फिल्म का वो सब भी आप जानेंगे, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। कीप लिसनिंग एंड कीप एंजॉयिंग रेडियो मसी 24/7 लाइव, सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो सिंस 2009।

0: सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: जी आपका बहुत बहुत स्वागत रेडियो मस्ती पर। आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से और मैं आज डायरेक्टर नंबर वन की बात कर रहा हूँ, डेविड धवन की। संजय दत्त के इंसिस्ट करने पर डेविड ने अपनी पहली फिल्म बनाई जिसका नाम था हनी गैसेस? नाम था ताकतवर। ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसमें संजय दत्त खुद थे और गोविंदा थे उनके साथ लीड रोल में।
2: तेरी कलाई का नाप ले रहा हूँ खुराना, ऐसी हथकड़ी बनाऊंगा जिससे ना हवा गुजर सकेगी ना ही तेरे रगों से खून।
1: डेविड धवन की ये पहली फिल्म थी और पहली ही फिल्म हिट रही। चाहे फिल्म के डायलॉग्स हों या फिर गाने, हर चीज लाजवाब थी।

वैसे डेविड धवन को कॉमेडी किंग माना जाता है, लेकिन इन्होंने शुरू में एक्शन फिल्में ही बनाई थी, जैसे ताकतवर के बाद उन्होंने बनाई आग का गोला, गोला बारूद। लेकिन फिर 1990 में एक फैमिली ड्रामा इन्होंने बनाया और वो सुपर डुपर हिट हो गया। फिल्म का नाम था स्वर्ग। इसमें राजेश खन्ना और गोविंदा लीड रोल में थे और भाई साहब कमाल का इमोशन इन्होंने दिखाया एक सर्वेंट और एक मास्टर के बीच। मालिक होते हैं राजेश खन्ना और फिर उनका वक्त बदलता है और उनके हालात बहुत खराब हो जाते हैं और ये जो सर्वेंट होता है गोविंदा ये बहुत बड़ा स्टार बन जाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया फिल्म थी और इस फिल्म के सुपरहिट होने के बाद डेविड धवन एक अच्छे एडिटर तो थे ही, अब उनकी गिनती अच्छे डायरेक्टर्स में भी होने लगी। अब देखिए सेलिब्रेशन का टाइम है तो सेलिब्रेशन बगैर म्यूजिक के हो सकता है क्या? तो आइए ये गाने सुन लेते हैं, एंजॉय कीजिए इनको। मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊंगा इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 सितंबर 7 PM onwards, CSC Auditorium, Tissenson Road. Tickets $60 onwards. Contact and pay now 8138-2790. Ishq Sufiana by Amit Dhamelia.
1: It's a Masti Partner event.
2: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
3: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
2: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
3: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
1: जीजी
3: कृषि वल नट्स ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com।
1: GGMart, your personal grocer.
0: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026, be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique? Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 AM to 6 PM, Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.

हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलशिता हमारा। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट।

झगड़ा बाबा, यहाँ खिलौनी वावा, यहाँ कडांडिया बाबा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तान हमारा। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट।

जीते हैं मस्त होके मस्ती में लोग सारे जो है मजा यहाँ पे वो ना मजा कहीं पे। यहाँ की ईद बाबा, यहाँ दिवाली बाबा, यहाँ की होली बाबा, दुल्हन की डोली बाबा, चनिया चोली बाबा।

0: से डेविड अब एक अच्छे खासे जाने पहचाने डायरेक्टर्स की लिस्ट में शुमार हो चुके थे। उनका नाम इंडस्ट्री में अब अदब से लिया जाने लगा था। एक और फिल्म उन्होंने बनाई जो सुपरहिट हो गई स्वर्ग के बाद, वो थी शोला और शबनम। इसमें गोविंदा तो थे ही, साथ में थी दिव्या भारती।
1: तुमने मेरे कायदे प्लस कानून की लिस्ट क्यों नहीं पढ़ी?
2: पढ़ी थी सर।
1: झूठ बोलते हो तुम। पढ़ी होती तो तुम्हें 13 नंबर कानून अच्छी तरह याद होता। क्या है चढ़ बार क्यों तुम्हारा बार क्यों है? हिले क्यों तुम? अटेंशन में हिले क्यों तुम?
0: इस फिल्म का नाम पहले खिलाड़ी रखा जाने वाला था, लेकिन खिलाड़ी नाम का राइट वीनस के पास था, इसलिए फिर प्रोड्यूसर पहलाज निलहानी को इसका नाम शोला और शबनम रखना पड़ा। फिल्म में गाना लीड एक्टर गोविंदा ने खुद गाया है, ये वाला।

शोला और शबनम 92 में आई थी, जो सुपरहिट रही, और इसी साल डेविड धवन ने एक और हिट फिल्म दी, बोल राधा बोल, और ये फिल्म साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स की लिस्ट में तीसरे नंबर पर थी, दीवाना और बेटा के बाद। ऋषि कपूर के साथ डेविड की ये पहली फिल्म थी और जूही चावला इनके ऑपोजिट थी। तारा तड़ना दिल हमारा, ये गाना

कादर खान भी थे इस फिल्म में। डेविड कादर खान को प्यार से भाईजान बुलाते थे और इस फिल्म के बाद डेविड की 90% फिल्म्स में कादर खान ने काम किया। और डेविड कहते हैं कि मैं भाईजान के बिना कोई फिल्म बनाऊं ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता। बोल रहा था बोल में कादर खान साहब का कैरेक्टर बड़ा अजीब था। इनको दिन में तो सब दिखाई देता है लेकिन जैसे ही शाम होने लगती है धुंधला और रात में तो दिखाई नहीं देता। फिल्म में जबरदस्त कॉमेडी होती है जब जब कादर खान आते हैं। लेकिन फिर अगले साल इन्होंने प्रॉपर एक्शन कॉमेडी फिल्म बनाई जिसका नाम था आंखें। लेकिन सिंगापुर इसके बारे में हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, जा रहे हैं तो हमें साथ ले जाइए, हमें तो पॉकेट में रखकर आप ले जा सकते हैं। अपने दिल के पास रखिए और सुनते रहिए रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव। लौटता हूँ इस ब्रेक के बाद।

0: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन जैमिंग? जिस भजन जैमिंग मूवमेंट ने हजारों को एक साथ गाने पे मजबूर कर दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैक स्टेज सिबलिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, और जब पूरा हॉल एक साथ गाएगा वो बनेगा द रियल बैक स्टेज सिबलिंग्स एक्सपीरियंस। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। Not your usual sit and watch show. Sing along, clap along, jam along. Bhajan jamming with backstage siblings. Tickets on Sistic. Book now.
1: The Masti Partner Event.
0: This Ganesh Chaturthi, bring home a bappa you simply can't take your eyes off. Vibrant colors, gorgeous ornaments, beautiful poses, mesmerizing detailing, eco-friendly and more. Har Ganpati idol apne aap mein khas. Welcome bappa for Ganesh Chaturthi or choose one to be a beautiful part of your home forever. See the magnificent collection at Jyoti Stores Ganpati Showroom, 21 Cuff Road. Come for the variety, leave with your bappa.

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आपका स्वागत। समर लेजेंड्स वाला है आपके साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर, और शो लेजेंड्स फिर से, जहां आज हम बात कर रहे हैं डायरेक्टर नंबर वन डेविड धवन की। 1993 में डेविड धवन लेकर आए एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म आंखें। ये गाना तो आपने जरूर सुना ही होगा, ओ लाल दुपट्टे वाले तेरा नाम तो बता,
1: ओ लाल दुपट्टे वाले तेरा नाम तो बता।
0: बब्बू लहरी का कमाल का म्यूजिक और गोविंदा और चंकी पांडे की जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग के साथ गजब का एक्शन भी था इस फिल्म में।
2: बच्चे क्या हो गया तुझे?
3: एक मिनट ठहर जरा, यार ये कैसा एक्सीडेंट है? चोट तो कहीं नजर नहीं आ रही है।
4: अंदरूनी चोट लगी है, गाड़ी सीधी भेजा पर चढ़ गई
5: और ये बेचारा पागल हो गया।
4: हम पागल नहीं हुए।
5: देखिए
0: फिल्म का रिजल्ट क्या हो सकता था भैया, हिट ही होना था। 89 से लेकर 1993 तक डेविड ने 9 फिल्में बनाई, जिनमें 7 तो सुपरहिट हो गई। लेकिन फिर अगले ही साल डेविड ने जो फिल्म बनाई, उसने तो सारा ही रिकॉर्ड तोड़ दिया सक्सेस के। इतनी बड़ी हिट फिल्म रही है कि इस फिल्म के बाद गोविंदा राजा बाबू के नाम से जाने जाने लगे।
6: राजा बाबू चल गया कोई जादू, नौ रहा दिल बेकाबू, क्या कर गई हसीना।
0: जी हाँ, फिल्म थी राजा बाबू, जिसमें शक्ति कपूर कहते हैं, आओ नंदू मैं सबका बंधु। फुल ऑन कॉमेडी थी फिल्म। गोविंदा, कादर खान और शक्ति कपूर की जबरदस्त कॉमेडी ने सबको दीवाना कर दिया था। आनंद मिलिंद का बेहतरीन म्यूजिक, हर एक गाना ब्लॉकबस्टर हिट था, और कुछ गाने थोड़े से डबल मीनिंग थे लेकिन हिट थे साहब, बहुत हिट थे। मुझे लगता है आप सबको ये गाना सुनने का मन कर रहा होगा। अब तो आप एक काम कीजिए, ये गाने सुन लीजिए, एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर हम, म्यूजिकल ब्रेक, और इस कहानी को, डेविड धवन की कहानी को मैं जारी रखूंगा इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। रेडियो मस्ती पर आप सुनते रहिए

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक, रेडियो मंजी 24/7 लाइव है और मैं हूँ समर। और आज मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो है डायरेक्टर नंबर 1 डेविड धवन। तो चलिए डेविड धवन की आगे की हम बात करते हैं। डेविड धवन की हिट फिल्मों की हम बात कर रहे थे, तो राजा बाबू की हमने बात की और इस फिल्म के बाद डेविड ने 3-4 फिल्में और बनाई जो एवरेज रही। लेकिन एक फिल्म का जिक्र मैं यहाँ जरूर करूंगा, एक गाने के लिए करूंगा खासतौर से, क्योंकि इस फिल्म का ये गाना बहुत ही पॉपुलर हुआ था। सरोज खान ने कोरियोग्राफ किया था ये गाना और गाना माधुरी दीक्षित पर पिक्चराइज किया गया था। फिल्म थी याराना और गाना था मेरा

इस गाने में माधुरी का स्टेप सिग्नेचर स्टेप बन गया था। कमाल था साहब, कमाल। अच्छा, डेविड धवन खुद ही अपनी फिल्में लिखते हैं, लेकिन शुरू में इनकी ज्यादातर फिल्में डायरेक्टर अनीस बज्मी ने लिखी, जो खुद बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और स्क्रिप्ट राइटर तो कमाल के हैं ही। ये भी कॉमेडी फिल्में बनाते हैं और कमाल की फिल्में बनाते हैं। वेलकम के दोनों पार्ट और थैंक यू ये हिट फिल्में अनीस बज्मी ने ही बनाई हैं। डेविड धवन कितने बड़े डायरेक्टर हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लोग साल में सिर्फ एक हिट देते हैं, लेकिन डेविड साल में कम से कम दो सुपर हिट देते हैं। ये नंबर ज्यादा भी हुआ है कभी कभी, लेकिन दो तो रहा ही है। यानी आप देखिए 1995 में कुली नंबर वन, राजा बाबू के बाद गोविंदा की सबसे बड़ी हिट फिल्म रही है। एक बार फिर आनंद मिलन का धमाकेदार म्यूजिक था, सुनेंगे ये था।

और जैसे कि मैंने कहा था कि कादर खान तो थे ही इसमें भी, लेकिन इस बार फिर राजा बाबू वाली जोड़ी यहाँ पर रिपीट थी, गोविंदा और करिश्मा की। वेल आएंगे आएंगे, आपकी गली भी आएंगे, लेकिन फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं। इस ब्रेक में आपकी गली आएंगे हम, आप सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव पर।

0: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique? Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides, and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
1: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून. हमने उसे कहा इश्क सूफियाना. दो यादगार एडिशन्स के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया. 26 सितंबर 7 पीएम ऑनवर्ड्स सीएससी ऑडिटोरियम टू सेंसन रोड. टिकट्स $60 ऑनवर्ड्स. कॉन्टैक्ट एंड पे नाउ 8138279 0. इश्क सूफियाना बाय अमित धमेलिया.
2: It's a Masti Partner event.

0: सुन रहे हैं समर के साथ लेजेंड्स फिर से।
1: एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। मैं हूं समर आपके साथ और आज मैं बात कर रहा हूं मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर डेविड धवन की। डेविड धवन की ज्यादातर कॉमेडी फिल्में गोविंदा के साथ रही। तो एक्टर गोविंदा के लिए क्या कहते हैं डेविड धवन भाई? इन्होंने 17 फिल्मों में साथ साथ काम किया, उनमें से 13 तो सुपरहिट रही। सुन लेते हैं क्या कहते हैं
2: गोविंदा यार, आउटस्टैंडिंग। आई मीन देयर नो टू वेज अबाउट इट। और मतलब उसने मेरे साथ 17 फिल्में की हैं। वो 17 फिल्म तक मुझे नया लगा है।
1: और जैसा कि मैं कह रहा था कि हर साल कम से कम 2 फिल्में तो सुपरहिट होती थी और कभी कभी ये नंबर ज्यादा भी हो जाता था। तो अगले ही साल यानी 1996 में साजन चले ससुराल, लोफर और मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी आई।
3: तो

0: और इस फिल्म में अक्षय कुमार पहली बार कॉमेडी करते नजर आए। यानी जो एक्शन हीरो थे उन सब से डेविड ने कॉमेडी करवाई और इस फिल्म में अक्षय ने गजब की कॉमेडी की। साथ में सतीश कौशिक जो उनके मामा बने हैं, यानी अब तक ये गोविंदा और अक्षय कुमार से कॉमेडी करवा चुके थे, लेकिन फिर 1997 में इन्होंने पहली बार सलमान से भी कॉमेडी करवाई और ये फिल्म भी सुपरहिट रही। फिल्म का नाम था जुड़वा, जिसका पार्ट टू भी आया और ये बनाया डेविड धवन ने अपने बेटे वरुण के साथ।
1: दुनिया में आई हो तो लव कर लो, दुनिया में आई हो तो लव कर लो, थोड़ा सा जी लो, थोड़ा थोड़ा मर लो।
0: सिंगापुर अभी एक जुड़वा सा ब्रेक ले रहे थे, मतलब बिल्कुल जुड़ा हुआ होगा। इस ब्रेक के तुरंत बाद मैं लौट कर आ जाऊंगा और आपसे बात करूंगा डेविड की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के बारे में। स्टे कनेक्टेड।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: बड़े मियाँ बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। फिल्म की हम बात करने वाले हैं, डेविड धवन स्पेशल शो चल रहा है रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। मैं हूँ समर आपके साथ। तो इस फिल्म में डेविड के साथ पहली बार मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने काम किया और साथ में छोटे मियाँ गोविंदा थे। यानी अब आप सोचिए कि मनमोहन देसाई की फिल्मों में कॉमेडी करने के बाद पहली बार डेविड धवन की फिल्मों में कॉमेडी किया अमिताभ बच्चन ने, और गोविंदा अमिताभ की जोड़ी कमाल की रही। दोनों का बोला गया एक एक डायलॉग हिट था, और गानों की तो बात ही क्या करें जनाब, बहुत ही कमाल। पहली बार अमिताभ के साथ काम करके कैसा लगा डेविड को, ये आप उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए।
2: बच्चन साहब आउटस्टैंडिंग कॉमेडी, बहुत अच्छा, मतलब कमाल है। अच्छा बच्चन साहब के साथ काम किया, अमित जी का क्या है वो डायलॉग भी चेंज नहीं करते कुछ भी है, बट उनका मीटर जो होता है ना डायलॉग का, यू नो द वे टू से कहाँ पॉज लेना कहाँ बोलना, वो यूनिक है एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट।
1: इस फिल्म का म्यूजिक भी आनंद मिलिंद ने दिया था जो बहुत कमाल का रहा। डेविड कहते हैं कि वो अपनी फिल्मों में म्यूजिक और डायलॉग से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते।

नेवर। सिंगापुर बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई है डेविड धवन ने अपने 27 साल के करियर में। 45 फिल्में उन्होंने बनाई हैं और 85% फिल्में हिट नहीं सुपर हिट रही हैं, जो मेरे ख्याल से इतना बड़ा रिकॉर्ड है कि मैं क्या कहूँ, बहुत ही सक्सेसफुल डायरेक्टर्स ऐसा कर पाते हैं। वेल, एक ब्रेक का वक्त है यहाँ पर और ब्रेक के बाद बात करेंगे डेविड की अपने बेटे की फिल्मों को लेकर, क्या कहते हैं वो।

0: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशन्स के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 सितंबर 7 PM onwards, CSE Auditorium, Tessensen Road. Tickets $60 onwards. Contact and pay now 8138-2790. Ishq Sufiana, Ishq Sufiana by Amit Dhamelia.
1: It's a must-be partner event.

वेलकम बैक सिंगापुरिया रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव, और आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से मेरे यानी समर के साथ। दो पीढ़ी के हीरोज के साथ काम करने के बाद डेविड धवन ने तीसरी पीढ़ी यानी अपने बेटे के साथ भी काम करने का विचार किया। वैसे वो काम करना नहीं चाहते थे, लेकिन प्रोड्यूसर एकता कपूर ने डेविड धवन को एक फिल्म दिखाई जो साउथ की बनी हुई थी, तो डेविड को ये फिल्म अच्छी लगी और डेविड के बेटे रोहित धवन को भी ये फिल्म बहुत अच्छी लगी क्योंकि वो खुद भी डायरेक्टर है। लेकिन अब सवाल ये था कि इसमें एक्टर किसे ले, मतलब हीरो किसे बनाए। तो एकता ने कहा, इसमें सोचने वाली बात क्या है, आप वरुण को लीजिए। डेविड बोले, नहीं नहीं, मैं अभी वरुण को डायरेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन फिर रोहित धवन ने कहा कि यस डैडी, आपको वरुण को लेना चाहिए। तो साहब इस तरह से शुरू हो गई वो फिल्म जिसका नाम था मैं तेरा हीरो।

0: दो पलाश।
1: लेकिन डेविड कहते हैं कि शूटिंग में बहुत मजा आया, वरुण के साथ काम करके उन्हें बहुत कमाल का एक्सपीरियंस हुआ। ये खुद डेविड की जुबानी सुनिए क्या एक्सपीरियंस हुआ।
2: आई एंजॉयड, वरुण वाज देयर। मैं जब फिल्म शूट कर रहा होता हूँ ना, तो मुझे बेटा नजर नहीं आता, मुझे मेरा एक्टर नजर आता है। और आई ट्राई टू पुश हिम अगेंस्ट द वॉल, एंड समटाइम मुझे बोलता भी है, पापा मैम एन न्यू कमर, आई जस्ट, दिस इज माई सेकेंड फिल्म, यू ट्रीट मी लाइक यूर एज इफ गोविंदा है सामने या सलमान है। ऐसे बेटा तू एक्टर, आई हैव टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ यू। मैं अगर वो सोचूंगा तो नहीं कर सकता।
1: वेल, डेविड धवन ने बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम किया है, लेकिन उनको लगता है कि सलमान खान जैसी एक्टिंग कोई नहीं कर सकता, मतलब उनको कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता। आप खुद सुन लीजिए।
3: सलमान एक एक्टर है जिसको, बिकॉज हिज एक्टिंग इज हिज ओनली, हिज डायलॉग डिलीवरी इज हिज, इन इट्स लाइक ही हैज हिज ओन सिनेमा यार, यू नो। आप मतलब आप एक स्क्रिप्ट लेके जा रहे हैं, तो वो उसको एक्टिंग उसकी अपनी है, उसका स्टाइल है अपना।
1: तो डेविड की इन बातों के साथ यहाँ एक म्यूजिकल ब्रेक का वक्त हो चला है। इस ब्रेक के बाद आपसे फिर से होगी मुलाकात, और ये होगी आखिरी मुलाकात आज की। सो स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग रेडियो मस्ती, सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो सिंस 2009।

0: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन जैमिंग? जिस भजन जैमिंग मूवमेंट ने हजारों को एक साथ गाने पे मजबूर कर दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैक स्टेज सिबलिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, और जब पूरा हॉल एक साथ गाएगा वो बनेगा द रियल बैक स्टेज सिबलिंग्स एक्सपीरियंस। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। Not your usual sit and watch show. Sing along, clap along, jam along. Bhajan jamming with backstage siblings. Tickets on Sistic. Book now.
1: It's a Masti Partner event.
2: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
3: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो, या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
2: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
3: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
4: जीजी
3: कृषि वल नट्स ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com।
4: GGMart, your personal grocer.
5: Do you want a partner? Oh, partner. Do you want a partner? Love me, say. Want a partner? Oh, partner.

0: वेलकम वेलकम वेलकम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत डायरेक्टर नंबर वन डेविड धवन स्पेशल शो में आपका एक बार फिर से स्वागत। मैं हूँ लेजेंड्स फिर से, मैं समर फिर से। वैसे ही आज की हमारी आखिरी मुलाकात है, लेकिन मुझे लगता है कि डेविड धवन स्पेशल ये प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम डायरेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने डेविड धवन जितनी फिल्में बनाई हैं और उतनी हिट भी दी हैं। डेविड के बारे में वरुण कहते हैं कि फिल्म मैं तेरा हीरो के सेट पर टेनिस बॉल को उन्होंने दिखाकर मुझे कहा कि इस टेनिस बॉल को अनुपम खेर समझो और अब डायलॉग बोलो। उनकी बात सुनकर सारे असिस्टेंट डायरेक्टर मुझे गौर से देखने लगे और सोचने लगे कि अब ये एक्टिंग कैसे करेगा, देखते हैं। लेकिन जब मैंने सीरियसली पापा से पूछा कि क्या करना है, तो पापा बोले कि एक्टिंग करो, समझो तुम्हारे सामने अनुपम खेर खड़ा है। फिर मैंने वो सारे डायलॉग्स बोल दिए। तो मतलब वो ये समझाना चाहते थे कि अगर तुम टेनिस बॉल को अनुपम खेर समझकर एक्टिंग नहीं कर सकते तो फिर तुम अच्छे एक्टर नहीं बन सकते। दरअसल ये परफेक्शन और ये चीजें डेविड ने डायरेक्टर मनमोहन देसाई से सीखी हैं। देसाई साहब को वो अपना गुरु मानते हैं और क्या कहते हैं उनके बारे में, आइए आपको भी सुना देते हैं।
1: मैंने स्टार्ट की ताकतवर से, जो कॉमेडी जॉनर मनमोहन देसाई का जॉनर था, एक मनमोहन देसाई का अलग जॉनर है जो फुल होलसम फिल्म का जॉनर है, जो मेरा गुरु है बेसिकली, जिसको मैंने फॉलो किया। मतलब वो मेरा गुरु रहा है, रहेगा हमेशा, यू नो, मतलब ही इज द अल्टीमेट फॉर मी वेस्ट सिनेमा इज कंसर्न, बिकॉज ही न्यू एवरीथिंग के ह्यूमन रिलेशनशिप उससे अच्छा कोई कर नहीं सकता। गाने बड़े करना, कॉमेडी करना, सब कुछ करता था, एक्शन भी लेके आता था, मतलब जिसको बोलता वो आपको सिनेमा दिखाता था।
0: लेजेंड्स ऑन लेजेंड, जी हाँ, एक लेजेंड एक दूसरे लेजेंड की तारीफ में अगर ऐसा कह रहा है तो ये एटीट्यूड ही उसे लेजेंड बनाता है। डेविड धवन अनडाउटेडली लेजेंड है। तो आज का ये शो हम यहाँ पर अब समाप्त करेंगे क्योंकि वक्त ने इशारा कर दिया है, लेकिन आपसे एक और शख्सियत के साथ मुलाकात होगी, एक और लेजेंड की कहानी मैं सुनाऊंगा आपको। आपको आना होगा उसके लिए यही, यानी रेडियो मस्ती पर। अभी जाने का वक्त है और जाते जाते आपसे कुछ वादे मैं चाहता हूँ। कहिए कि आप रखेंगे अपना ख्याल, अपने अपनों का ख्याल, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल। किसी के दिल में मोहब्बत बनकर बस जाएंगे, किसी के चेहरे पर मुस्कान बनकर सज जाएंगे और कुछ ऐसा कर जाएंगे कि लोग आपको याद करें। और याद मुझे भी रखिएगा, मेरा नाम है समर, आपसे मिलता हूँ यहीं पर, मिलूंगा भी यहीं पर। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।

सिस्टर ओ सिस्टर दोस्त कहाँ कोई तुमसा नहीं कोई सिस्टर चलेगी जाने दो

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: वेलकम फ्रेंड्स टू द शो दैट नेवर एंड्स। आई हैव टेकन द चांस टू मेक यू डांस। यू विल मूव योर फीट एंड ग्रूव टू द बीट। सो देन व्हिच बीट वुड यू लाइक? दोस्तों कौन सा डांस पसंद करेंगे आप? रॉम्बा?
2: नो।
1: सांबा?
2: नो।
1: रॉम्बा?
2: नो।
1: सांबा?
2: नो।
1: टेकिला?
2: नो।
1: टैंगो?
2: नो।
1: चार्ल्सटन?
2: नो।
1: पोल्का?
2: नो।
1: नो?
2: नो।
1: तो फिर क्या हो? वन
2: राउंड।

0: मिस बसंती।
1: जादू है नशा है
2: और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना
3: रात।

जुल्फो की शाम पी लीजिए, हमारे हाथ से दो चार जाम पी लीजिए। पिलाए जब कोई माशूक अपने हाथों से शराब।

99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: मैंने नहीं पिया।
1: ऑफ कोर्स तूने पिया।
0: शर्म,
2: मैंने नहीं पिया।
1: व्हाट नॉनसेंस मिस्टर जॉनसन, तुमने पिया?
0: नहीं पिया।
1: पिया?
0: नहीं पिया, नहीं पिया, नहीं पिया, नहीं पिया, नहीं पिया।
3: जो हल्ला किया तो समझो मिया।
2: मालूम मालूम है, हर बिल्डिंग का बत्ती जलेगा।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं हल्ला।

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ। भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

0: सुबह की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 Live Fan.
1: Suno na, dil ne tumse kya keh diya hai. Iski baatein tum suno na. Waise to baatein aapko meri sunni padegi 10 baje tak. Good morning, Radio Masti 24/7. Par bilkul welcome karti hui with a big smile on my face is me, of course, Antara. Kyunki yahan par shuru ho chuka hai hamara Tuesday morning wala show, which is Masti Ka Mantra. Kabhi kabhi calendar dekh ke na genuinely lagta hai ki excuse me, itni kis baat ki jaldi chal rahi hai. I mean, can you imagine? It's already 8th of September, right? अभी तो लग रहा था कि you know जन्माष्टमी की preparations चल रही है, अब जन्माष्टमी हो गया और अब बप्पा के आने की तैयारियां शुरू हो गई, फिर देखो नवरात्रि, फिर हमारा जो है मस्ती मीडिया नेटवर्क का एनिवर्सरी, फिर दिवाली, एंड बिफोर यू नो इट इट वुड बी क्रिसमस एंड न्यू ईयर. अनबिलीवेबल बट ट्रू. मुझे तो सीरियसली आजकल वैसे भी लाइक हर रोज का दिन जो है वो भी कुछ ज्यादा ही जल्दी निकलते हुए फील सा हो रहा है. पता नहीं आपको कैसा लग रहा है. सुबह होती है, हम अपनी लिस्ट लेकर निकल पड़ते हैं, ये करना है, वो खत्म करना है, इसको कॉल करना है, ये वाली डेडलाइन है, उसके बाद यहाँ पे जाना है, और फिर एकदम से रात को लगता है कि यार अरे आज का दिन कहाँ गया. एंड इफ इट इज मंडे देन लाइक आई डोंट इवन फील, इट्स जस्ट दैट मैं घर जाती हूँ, सोती हूँ और वापस आ जाती हूँ. बट देन आई वॉज थिंकिंग मे बी दैट्स जस्ट लाइफ. टाइम को स्लो तो हम कर नहीं सकते, कैलेंडर को बोल नहीं सकते कि भाई सितंबर पे थोड़ा सा रुक जाओ, हम कैचअप कर रहे हैं अभी भी. बट जो कर सकते हैं वो है हर दिन को एक्चुअली जीना. हर दिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो वो बिल्कुल जरूरी नहीं है. इसी के साथ साथ हमारी सपना आंटी और सलमा तो पहले ही आ चुकी है. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. किसी दिन बस एक अच्छी सी चाय हो, किसी दिन अपने के साथ थोड़ी सी यू नो हंसी हो, किसी दिन काम में एक छोटा सा यू नो विन हो जाए, किसी दिन घर पहुँच कर ये फीलिंग आए कि हाँ यार आज का दिन अच्छा था. बिकॉज ईयर्स तो कैलेंडर में पास होते रहते हैं, लाइफ एक्चुअली इन्हीं ऑर्डिनरी दिनों में ही होती है. नहीं सो यस, टाइम इज फ्लाइंग, बट देन दैट्स दैट. वी लिव एवरी डे एंड मे वी लिव एवरी डे. मैं हूं अंतरा, वेलकम टू मस्ती का मंत्रा. पूरी तैयारी के साथ आई हूँ, बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, बट उसके साथ साथ चलते रहना चाहिए हमारे खूबसूरत से गाने. सो लेट्स बिगिन. गुड मॉर्निंग.

0: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 सितंबर 7 PM onwards, CSE Auditorium, Tessensen Road. Tickets $60 onwards. Contact and pay now 8138-2790. Ishq Sufiana, Ishq Sufiana by Amit Dhamelia.
1: It's a musty partner event.
2: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
3: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
2: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
3: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
4: जीजी
3: कृषि वर्ल्ड नट्स ओनली ऑन GTMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GTMartOnline.com।
4: GTMart, योर पर्सनल ग्रोसर।
5: सुबह की डोज ऑफ फन एंड फैक्ट्स, मस्ती का मंत्र विद RJ अंतरा।
6: गुड मॉर्निंग रेडियो मस्ती 24/7 पर वेलकम बैक। 7:22 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में। मैं यहाँ पर अंतरा आपके साथ मस्ती का मंत्र। ऑफ कोर्स सुबह सुबह अगर अंतरा की आवाज आ रही है, विच मींस देर इज अ वेरी हाई चांस ऑफ इट्स अ ट्यूसडे मॉर्निंग, बट देर आर एट टाइम्स वीक्स में ऐसे चांस आ जाते हैं कि वो मंडे मॉर्निंग भी बन जाता है, बट जो है नहीं उसके बारे में सोच के क्या ही करना। ऑलराइट, अगली खबर जो यहाँ पर है, वी आर टॉकिंग अबाउट द नेशनल फिल्म अवार्ड्स। दैट इज राइट। एंड भाई, नेशनल फिल्म अवार्ड्स अगर इंडियन सिनेमा की बात की जाए तो रिपोर्ट्स जो है हाल ही में ये कह रहे हैं दैट इस साल ये जो प्रेस्टीजियस सेरेमनी है कुड मूव आउट ऑफ दिल्ली फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन इट्स 72 ईयर्स का हिस्ट्री। दैट इज राइट, दिल्ली से ये पहुंचने वाले हैं सीधा गुजरात विद एकता नगर, विच इज द होम ऑफ द स्टैचू ऑफ यूनिटी, एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू होस्ट द सेरेमनी। नाउ थिंक अबाउट इट, फॉर मोर देन आई थिंक 7 decades नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो है दिल्ली में ही हुआ है। इनफैक्ट यही सोचा कि भाई जब नेशनल फिल्म अवार्ड्स है तो वहीं पे होगा, एंड ऑटोमेटिकली वो उनका विज्ञान भवन आ जाता है एंड द फॉर्मल सेटिंग एंड द विनर्स वॉकिंग अप रिसीविंग अपना अवार्ड्स, एंड वो बड़ा फेमिलियर सा विजुअल है। बट दिस टाइम द बैकड्रॉप कुड लुक वेरी वेरी डिफरेंट। रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं दैट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है इंडिया की, शी मे प्रेजेंट द ऑनर्स ड्यूरिंग हर गुजरात का विजिट लेटर दिस मंथ। एंड ऑफकोर्स देर आर सम वेरी फेमिलियर नेम्स विनर्स में इस टाइम एज वेल। सो क्यूरियोसिटी सिर्फ ये अवार्ड कौन जीत रहा है वहां तक नहीं है कि अवार्ड हो कहा रहे हैं, दिस इज ऑल्सो करंटली द पावर ऑफ द कॉन्वर्सेशन। सो इफ एकता नगर इज ऑफिशियली कंफर्म्ड, इट विल बी क्वाइट अ हिस्टोरिक फर्स्ट फॉर नेशनल फिल्म अवार्ड्स। 72 ईयर्स, एक फेमिलियर होम एंड पॉसिबली अ ब्रांड न्यू एड्रेस दिस टाइम। अब ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन जो है उसका वेट हो रहा है। मीनवाइल हमारा एड्रेस नहीं, हम कहाँ बदले, बस नाम थोड़ा सा चेंज हुआ है, मस्ती मीडिया 24/7। क्या आपको लगा कि अरे अचानक से आप ढूंढ रहे हो सर्च बार में जाकर रेडियो मस्ती, रेडियो मस्ती? जी हाँ, यहाँ पे जब आप रेडियो सेक्शन में आओगे तो रेडियो मस्ती हम 24/7 जरूर है, लेकिन ऐप जो है अब है मस्ती मीडिया 24/7। जस्ट इन केस यू डिड नॉट नोटिस, तो हम है ना, हम इसीलिए आपकी यहाँ पे खिदमत में बात बात पे हाजिर हो जाते हैं कि याद दिला दे। नहीं, खुद चाहे हमें कुछ भी ना याद रहे, बड़े बड़े काम भूल जाए, लेकिन आपको याद दिलाने का काम कभी नहीं भूल सकते। गुड मॉर्निंग।

0: बाजू।
1: ट्रैफिक अपडेट
2: 7:31 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में रेडियो मस्ती 24/7 पर। इट्स टाइम फॉर ट्रैफिक अपडेट। व्हीकल ब्रेकडाउन इस वक्त आपको मिलेगा ऑन केजेई टुवर्ड्स बीकेई एट सेंजर रोड एग्जिट। व्हीकल ब्रेकडाउन की खबर ऑन पीआईई टुवर्ड्स टुवर्स आफ्टर एडम रोड, और व्हीकल ब्रेकडाउन की खबर है ऑन बीकेई टुवर्ड्स पीआईई बिफोर एसएलई। वेल, ये था इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट। कमिंग अप नेक्स्ट इज अ ब्यूटीफुल अनदर नंबर स्ट्रेट फ्रॉम द 90s, और ये वो कहता है जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। लेट इट स्पीक फॉर मी। गुड मॉर्निंग।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: क्योंकि इस बार मोरिया की गूंज फेरर पार्क में होगी। महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर प्रेजेंट्स गणेश उत्सव 2026। आया देखो आया बप्पा मोरिया। हर सुबह और शाम आरती, कल्चरल परफॉर्मेंसेस, अथर्वशीर्ष पठन और जब बजेंगे ढोल ताशा। 14th to 18th September, open field beside Holiday Inn 2 Owen Road, Farrer Park. Maharashtra Mandal Singapore ka Ganesh Utsav 2026.
4: Your weekly mood lift mantra, only with RJ Antra.
5: चलिए साथ मिलकर बोलते हैं, बोलेंगे ना मेरे साथ, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। कितना अच्छा वाइब और फील आता है जब जब मैं ये बोलती हूँ। इट्स 7:39 बाय द स्टूडियो क्लॉक। गुड मॉर्निंग मस्ती का मंत्रा सुन रहे हैं आप अंतरा के साथ। एंड यस, एवरी सिंगल टाइम अब अगर मैं बोलूँ कि अब आप जाकर जो है गणेश उत्सव मना सकते हैं और बिल्कुल सबके साथ मिलकर जो है गणपति बप्पा मोरया का नाम यू लिख मतलब बोल सकते हैं और दिल से बोल सकते हैं हर बार की तरह। सो वेल, सिंगापुर में गणपति बप्पा का स्वागत की तैयारियां जो है वो पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। एंड इफ गणेशोत्सव फॉर यू मीन्स प्रेयर्स एंड सेलिब्रेशन एंड ढोल ताशा विच कैन नॉट बी मिस्ड, कल्चरल परफॉर्मेंसेस एंड दैट अमेजिंग कम्युनिटी फीलिंग जो आती है ना, देन ऑफकोर्स यू हैव टू लिसन टू मी एंड मार्क योर कैलेंडर्स। सो महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर जो है दे आर ब्रिंगिंग यू गणेशोत्सव 2026 14th से 18th सितंबर तक एट द ओपन फील्ड बिसाइड जो हॉलिडे इन है 2 ओवन रोड फेरर पार्क। सेलिब्रेशंस जो है वो मंडे 14th ऑफ सितंबर सुबह 9 बजे से बिल्कुल स्थापना के साथ जो है गणपति जी की वहां पे शुरू होगी, फॉलोड बाय प्रेयर्स थ्रू द वीक। एंड सिर्फ पूजा ही नहीं, there are cultural performances every evening at 7 PM. तो आप अपनी फैमिली को लाए, अपने फ्रेंड्स को लाए एंड just be a part of all these festivities. Thursday evening gets even more energetic kyunki dhol tasha jo hoga after unki evening prayer. And Friday 18th jo hai 18th of September ko celebrations include JJ Uttam at 5 PM followed by Uttar Puja at 8 PM. So Singapore mein this Ganesh Utsav bappa ka swagat bhi saath mein karenge, celebrate bhi saath mein karenge aur saath mein bolenge ki Ganpati bappa moreya. Yaad rakhiyega 14th to 18th of September Ganesh Utsav 2026 Maharashtra Mandal Singapore at Farrer Park. And yes, of course, is amazing occasion ke jo hai digital media partner se hum yani ki Masti Media Network hai na, isi baat pe ek bahut hi kamal ka gana from the movie jo hai Ranveer Singh Wali. Yep, it's a beautiful one. It's from Padmavat, but yeah, let's go for it. It's called Gajanana.

0: Aamir Khan wondered.
1: Wow. Look, I could have thought of anything. That's amazing. Yeah.
0: Salman Khan wanted answers.
2: Kaise kiya ye?
0: R. Madhavan said.
3: Awesome. You're very good, yeah. Very well done.
0: And Boman Irani?
4: I say this with great respect. This is actually, it's blown my mind.
0: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
5: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhani.
0: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wow! Wonderful Escapades and Epic Encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer, People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
6: How do you know these things? Stop reading my mind.
7: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique? Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
8: Har Tuesday, ek naya twist. Masti ka mantra with RJ Antra.
9: बस अभी अभी ये फेस्टिव बाजार का यहाँ पे एड चल रहा था और कोई मुझे यहाँ पर बता रहा था कि फेस्टिव बाजार के लिए वो सो वेरी रेडी है. रेडियो मस्ती 24/7 अंतराब के साथ यहाँ पर चल रहा है मस्ती का मंत्रा. बाय द वे, फेस्टिव बाजार के मोस्ट ऑफ द स्टॉल्स आर ऑलमोस्ट लाइक 80% आर सोल्ड आउट, बट जो लिमिटेड बाकी है एंड इफ यू हैव समथिंग टू शोकेस ऑफ योर ओन, definitely go for it. Yahan par hamari one of the listeners who have gotten her stall over there, Sapna aunty, makes amazing things. Bhai zarur jaiyega Mountbatten CCIAEC jo hai unke community hall mein, unke stall pe zarur jaye and yes, make the most of it. 27th of September, that's when it is happening. But well, yahi baat karte karte ek sawal jo hai wo main aapse puchna chahti hu. Algorithm jo hai aapke jo सोशल मीडिया का है, क्या आप उससे खुश है? एल्गोरिथम वो चीज है कि कभी कभी होता है ना कि आप कोई चीज सर्च कर रहे हैं रैंडमली, ठीक है, एंड सडनली आप के आने वाले जो नेक्स्ट सेट ऑफ रील्स हैं या फिर जो आपके उसमें दिखाया जा रहा है वो उसी से रिलेटेड है. जैसे इन माई एल्गोरिथम यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ नेल डिजाइन एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स आई एम इंटरेस्टेड इन. गैजेट्स के काफी सारे मिल जाएंगे, फनी जो चीजें हैं वो सारी मिल जाएंगी. But there are times when I get really irritated. क्योंकि हो सकता है मैंने किसी बात के लिए कोई चीज सर्च की हो एंड नाउ यू नो अब सोशल मीडिया का एल्गोरिथम ये सोच रहा है कि नहीं नहीं इसको इसी से रिलेटेड और भेजते जाओ एंड वी डोंट नो वेदर यू नो वी वॉन्ट इट और नॉट एंड समटाइम्स आई रियली वॉन्ट टू रीसेट इट. आपने कभी ऐसा सोचा है या फिर आपने ऐसा फील किया है? सो इफ एवर गिवन दिस अपॉर्चुनिटी कि आप अपना एआई लाइक एल्गोरिदम ऑन या ऑफ कर पाते, वुड यू हैव टेकन इट? देयर इज अ कंट्री हु इज थिंकिंग अबाउट इट. वेल, फिलहाल के लिए बस इतना ही, बट इस घंटे को रैप अप करके अगले घंटे में जब मिलेंगे आई विल टेल यू दैट कौन कहां ऐसी बात सोच रहा है. लेट अस रैप अप दिस आवर विद दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गानास एंड यस आई विल सी यू घंटे के उस पार. गुड मॉर्निंग.